सुप्रभात। मीडियम वेव 330 दशमलव शून्य 3 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज दिन शुक्रवार शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:55 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रथम प्रसारण सेवा।

0: समाचार अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6 बजे को है, कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसा करुण

0: ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी गोरखपुर है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रार्थना है प्रभु आपसे, मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, मैं अज्ञानी अब आपके भरोसे हूँ, मेरा उद्धार कीजिए।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से श्वेता के साथ।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि रेलवे ट्रैक पर ना तो स्वयं जाएं और ना ही पशुओं को जाने दें। इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि रेलवे ट्रैक पर ना तो स्वयं जाएं और ना ही पशुओं को जाने दें, इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: हे प्रभु श्री राम, आपकी कृपा से ही हमारा जीवन सार्थक होता है, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने मेरे यानी श्वेता के साथ पवित्रता के साथ भगवान का अर्चन किया। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी गोरखपुर है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: प्रभु को मानना तो आसान है, लेकिन जानना बड़ा मुश्किल है। हम मानते तो हैं कि हम आप सबके भीतर परमात्मा का वास है, हम सबके भीतर प्रभु का निवास है, लेकिन क्या विचार करिए, चिंतन करिए कि प्रभु हमारे भीतर हैं, यह हमने स्वीकार किया है। अगर हमने यह स्वीकार किया होता तो हमारे जीवन में कभी हमसे त्रुटियां होती, हम गलत कार्य करते? अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो हम पूर्ण रूप से उस परमात्मा को मान नहीं पा रहे हैं। और पूर्ण रूप से परमात्मा को मानने की एक विधि है, जैसे दूध में घृत है, गन्ने में खाड़ है और आम के वृक्ष में से निकला हुआ आम का फल है। तो दूध में घृत है, यह परिलक्षित तभी हो सकता है जब दूध को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दूध को दही, दही से मक्खन, मक्खन से तब घी निकलता है। दूध में घी है, यह ठीक है, यह हम जान तो रहे हैं, लेकिन घी को निकालने की प्रक्रिया से जब घी अलग हो जाता है तो हम स्वीकार कर लेते हैं यह घी है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। हम सब जानते हैं कि हमको चलाने वाला, इस सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा ही है, परंतु फिर भी हमारे जीवन में दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, ऐसे ऐसे कार्य करना जो निंदनीय है हम कर रहे हैं, तो हम उस प्रक्रिया में नहीं हैं। अगर हम उस प्रक्रिया में प्रवेश करें, धीरे धीरे ही प्रवेश करें, और प्रक्रिया में प्रवेश करने का सबसे सरल उपाय है कि सर्वत्र परमात्मा विराजमान, यह भाव उदित कैसे होगा, यह भाव आएगा कैसे कि सब जगह प्रभु विराजमान है? तो ये भाव कहीं और से आने वाला नहीं है, यह आपके अंतःकरण की पवित्रता से ही संभव है। और वह भाव आने का प्रक्रिया क्या है, जैसे नवधा भक्ति है, सबका स्वरूप है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शख्य आत्मनिवेदनम। जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, यह दर्पण की भांति हैं और यह निवेदित करते हैं कि तुम्हारा वह भाव कैसे बनेगा। एक प्रक्रिया से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। जिन इंद्रियों को हमने संसार में लगा रखा है, इन्हीं इंद्रियों को जब हम विषय से हटा करके उस शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्ग पर लगाते हैं तो उस प्रक्रिया के हम पथिक हो जाते हैं, उस प्रक्रिया के मार्ग रूपी पथ के पथिक हो जाते हैं। और धीरे धीरे हमें यह लगने लगता है कि वह दृष्टा, वह परमात्मा, ओम इत्यक्षरम जगत सर्वम मुंडक उपनिषद का मंगलाचरण ही है, वह परमात्मा जो दृष्टा है, सर्वसमर्थमान है, उसे मात्र मान लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन अगर हम जान गए, सूरदास जी महाराज प्रभु को जान गए तो कहते हैं, निबल जान के जात हो बाँह छोड़ा के मोए, हृदय से तुम जानो तब मैं जानू तुम। उस परमात्मा को जब मानने के अलावा मीराबाई ने जाना तो राणा का दिया हुआ विष हंसते हंसते वह पी गई। उस परमात्मा को जब रैदास जी ने जाना तो मन चंगा कठौती में गंगा हो गया। उस परमात्मा को जब देवराव बाबा ने जाना तो महाराज देवराव बाबा को वह सामर्थ्य प्राप्त हो गया कि सबसे बड़े योगी हो गए जिनकी उम्र का पता नहीं। वह भाव जब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी में जगा तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भगवत रस रसिक भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हो गए। वह भाव जब राधा बाबा में जगा तो राधा बाबा इस गोरखपुर को छोड़ करके गए ही नहीं, उस धरा को छोड़ करके गए नहीं, वह भाव जगे। और जब भाव जगता है तो सबसे बड़ी बात कि आप पवित्र होने लगते हैं, आपका भाव, आपकी वाणी, आपका जीवन एक ऐसे आनंद की प्राप्ति होने लगती है जिस आनंद का वर्णन जीवा से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह आनंद महसूस किया जाता है। और परमात्मा को कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। परमात्मा का स्वरूप, ये जितने भी स्वरूपों का हम दर्शन करते हैं, एक प्रक्रिया है। वस्तुतः परमात्मा का स्वरूप तो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है। जितनी देर तक आप आनंदित रहते हैं, जितनी देर आप प्रसन्न रहते हैं, समझ लीजिए उतने देर तक परमात्मा से आपके आपका कनेक्शन है, आप कनेक्ट हैं। आप आनंदित हैं तो कनेक्ट हैं, आप दुखी हैं, आप उनसे दूर हैं। तो मानने से अच्छा है हम प्रयास करें, थोड़ा बहुत भी अगर जान लें तो हमारा कल्याण हो जाए।
0: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूं।

शास्त्रीय संगीत के आज के कार्यक्रम में विदुषी श्रुति सादोलकर का गायन सुनिएगा रागनी की कान्हर। समय रात 10:30 पर। रात्रि 8 हिंदी कार्यक्रम में एक वार्ता सुनिएगा दिलीप कुमार वर्मा से, विषय है प्रकृति और मनुष्य।

श्रोताओं, लाइट म्यूजिक का प्रोग्राम सुगम संगीत प्रसारित किया जाएगा रात 8:15 पर, दिन में 12:55 पर और सुबह 9:50 पर। इस कार्यक्रम में आज आप जगजीत सिंह के गाए कुछ गीत गजल का आनंद लीजिएगा।

प्रादेशिक संगीत एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कार्यक्रम में आज हम लाए हैं राजस्थानी लोकगीत। समय रहेगा रात 7:10 पर। देश हमारे कार्यक्रम का समय नोट कीजिए, रात 7:00। इस कार्यक्रम में कविता पाठ सुनिएगा श्री चंदेश्वर प्रसाद वर्मा से। कविता का शीर्षक है मई पर्यावरण।

किसान भाइयों का अपना प्रोग्राम खेती बाड़ी प्रसारित होगा शाम 6:10 पर। आज का ये प्रोग्राम लेकर आएंगे कृष्ण चंद्र और नित्यानंद शुक्ल। ग्राम जगत ये प्रोग्राम प्रसारित होगा शाम 5:35 पर। इस कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा होगी और पर्यावरण प्रदूषण और हम इस विषय पर एक वार्ता सुनिएगा श्री भगवान दत्त तिवारी से। और खेती किसानी कार्यक्रम प्रसारित होगा दिन में 1:50 पर। इस कार्यक्रम में आम की विदेशी और रंगीन प्रजातियों की बागवानी से लाभ इस विषय पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और श्री विनय कुमार से बातचीत सुनिएगा।

नारी जगत महिलाओं के लिए ये प्रोग्राम सुनिएगा दिन में 1:15 पर। आज का ये प्रोग्राम लेकर आ रही हैं आपकी सखी रंजना मिश्रा। श्रोताओं, फिल्म संगीत का प्रोग्राम पूर्वा सुहानी प्रसारित होगा 7:31 पर। हिट सुपर हिट ये प्रोग्राम में एनवायरनमेंट और अपने इकोसिस्टम पर बातें करते हुए खूबसूरत नगमों का सफर तय करेंगे 8:45 पर। 10:05 पर गाते गुनगुनाते ये प्रोग्राम सुनिएगा और 11:30 पर फिल्म संगीत का प्रोग्राम गीतांजलि प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के 90 साल मना रहे हैं, इस पर आधारित फिल्म संगीत सुनिएगा दिन में 12:30 पर और फिल्मी कव्वालियाँ सुनिएगा 7:31 पर। और हाँ, एक और फिल्म संगीत रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। शिवलता लेकर आएंगे कार्यक्रम युवाणी 5:05 पर। यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 5:05 पर और NCERT नई दिल्ली की प्रस्तुति कार्यक्रम उमंग दिन में 12:00। तो श्रोताओं, ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने उन्हें यह कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाएं। श्री राम को महाराज का यह संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। समय है क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का, जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे अब से कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, बॉर्डर पर खड़े वीरों को सलाम और उनके हौसलों को नमन। इसी के साथ देश गान का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीए

0: सी एसडीआरएफ और यूपी एसएसएफ के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्य योजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में कल से दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
1: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिल के उस पर काम करना है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी पीएसी एसडीआरएफ और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण और संरचना विकास एवं भावी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाए और सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाया जाए। श्री योगी ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीएसी की महिला बटालियनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर स्थित महिला पीएसी बटालियन परिसरों में क्रमशः वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना उदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून के दृष्टिगत बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीआरएफ को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खोज एवं बचाव कार्यों के लिए ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन की उपयोगिता पर विचार करने को कहा। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पर्यटन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।
3: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रदेश है। बैठक में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन की भी समीक्षा की गई। श्री योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधारोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे के पहले दिन वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है।
5: रक्षा मंत्री आज पूर्वाहन 11:05 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अपराहन 12:15 विश्व पर्यावरण दिवस पर कैंट स्थित कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम रोपित करेंगे। अपराहन 12:40 पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर उनके पति के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। शाम को 4:00 दिलकुशा लॉन में आयोजित बायो युग ग्रीन कमांड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतिभाग करेंगे। 6 और 7 जून को भी श्री सिंह लखनऊ में विभिन्न लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिलेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया हो। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
6: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM की शुरुआत की गई। JEM पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें ऐसी छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PSC, SDRF और UPSSF के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्ययोजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद 8:00 प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का प्रोग्राम पूर्वा सुहानी अब से कुछ ही देर में।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया था सुनैना फिल्म से, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट रविंद्र जैन थे और आवाज़ यीशुदास की। इसी कॉम्बिनेशन के साथ, यानी गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन और गायक कलाकार यीशुदास का अगला गाना हमने लिया है चित्तचोर फिल्म से। आइए सुनते हैं।

चित चोर इस फिल्म से भी आपने ये गाना सुना। कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है 1975 में आई फिल्म छोटी सी बात। इस फिल्म से यशुदास आशा भोसले की आवाज़, गीतकार योगेश, संगीतकार सलिल चौधरी।

1975 में आई फिल्म छोटी सी बात, इस फिल्म से भी आपने ये गाना सुना। अगला गीत श्रोताओं हमने लिया है 1977 में आई फिल्म दुल्हन वहीं जो पिया मन बाए, इस फिल्म से। इस गाने को लिखा है रविंद्र जैन ने और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने, जी हाँ, आवाज़ हेमलता और यीशुदास की। आइए सुनते हैं।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, इस फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना और कार्यक्रम का आखिरी गाना हमने लिया है साजन बिना सुहागन। इस फिल्म से गीतकार इंदीवर, संगीतकार उषा खन्ना, गायक कलाकार येशुदास।

0: उन्नीस सौ अठहत्तर में आई फिल्म साजन बिना सुहागन से श्रोताओं अभी आपने कार्यक्रम का आखिरी गाना सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम पूर्वा सुहानी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अब से कुछ ही देर में।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
5: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
5: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज

0: अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
1: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
0: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
5: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
4: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
6: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
4: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide.
6: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
4: Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions made by the Monetary Policy Committee at 10 a.m. in Mumbai. The six-member MPC started its three-day deliberations on Wednesday. In April, the Reserve Bank had kept its key policy rate unchanged. Here is more from our correspondent.
1: The government has set consumer price index-based inflation target at 4% with upper tolerance of 6% and a lower tolerance level of 2% for the central bank. The CPI rose slightly to 3.48% in April, mainly due to higher prices of gold and silver jewelry, as well as some kitchen items. As the CPI is within the tolerance level, economists are expecting that the key interest rate will be kept unchanged at 5.25%. It also says that the central bank will adopt a cautious approach in view of West Asia conflict, posing challenges for the inflation as well as economic growth. Jeevan Bhavsar, Akashwani News, Mumbai.
4: Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ramnath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as the Secretary General of Lok Sabha from 1983 to 1990. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the passing of Dr. Kashyap. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IAS officer.

0: as advisor to Prime Minister Narendra Modi. The Department of Personnel and Training has informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on the 10th of this month for a further period of 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Neelkanth Mishra as Executive Director, World Bank Headquarters, Washington, D.C., for a tenure of 3 years. The Department of Personnel and Training has informed that the tenure of Parameswaram Iyer has also been extended till the new incumbent assumes charge. The NDA Alliance in Andhra Pradesh has decided to allot 3 of the 4 vacant Rajya Sabha seats to the Telugu Desam Party TDP and 1 seat to the Janasena Party. The decision was announced by Chief Minister N. Chandrababu Naidu after a meeting of NDA Alliance partners held at its camp office in Amravati the previous night. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Russian President Vladimir Putin has hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its cooperation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with the heads of leading global news agencies, Putin lauded India's economic growth and its independent foreign policy and said Russia is determined to expand its economic engagement with the country. The Russian president said that India's diplomatic engagement with the U.S. does not hinder or undermine its time-tested relationship with Russia. He said Russia considers India as a reliable partner and it sees no negative consequences from New Delhi's bilateral relations with any other country. The Russian president also said that Russia proposed to India to work jointly on manufacturing the fifth generation Su-57 fighter jet. Putin added that his country is ready to provide India with critical technologies for major defense platforms and weapons. World Environment Day is being celebrated across the globe today. It has been observed on the 5th of June every year since 1973 as part of the United Nations Environment Program to build awareness to save life on Earth. A report.
1: The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect nature and the planet Earth. On the occasion of World Environment Day, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, and Minister of State, Kirti Vardhan Singh, will participate in a tree plantation program at Namo Oxygen Park at Maidangadi in the national capital under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. Several union ministers, chief ministers, ministers, MPs, MLAs will participate in World Environment Day events at the state level. The day raises awareness, mobilizes action, and promotes environmental sustainability. Through campaigns, events, and initiatives, the day inspires individuals and communities to make changes, fostering a sense of urgency and addressing environmental challenges for a sustainable future. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has extended greetings to the citizens on World Environment Day. In a social media post, Dr. Jaishankar encouraged everyone to work towards a greener, cleaner and more sustainable future. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav also urged the countrymen to renew their pledge to remain inspired by nature for the climate and future. Union Minister Dr. Jitendra Singh will inaugurate 2-day Lavender Festival at Bhadarwa in Jammu and Kashmir tomorrow under the theme Lavender Goes Global. The 4th Lavender Festival is being held at Government Degree College, Bhadarwa in Dodra district on June 6 and 7. The festival will witness enthusiastic participation of scientists, startups, aroma industries, entrepreneurs, policymakers, agribusiness stakeholders, students, progressive farmers and representatives of fragrance and wellness companies from across the country. A 2-day national workshop on seafood exports will begin in Visakhapatnam today to discuss ways to increase India's seafood exports and strengthen the sector across the country. The workshop will focus on improving seafood exports through better infrastructure, value addition, certification, traceability and policy support. Discussions will also be held on increasing the participation of startups and small businesses in the export sector. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunder squall conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. Heavy to very heavy rainfall is expected during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Tripura and Andhra Pradesh are also likely to experience rainfall today. According to the Met Department, Arunachal Pradesh is expected to witness thunderstorms and lightning today. Moving on to sports, India will take on arch-rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament at Kakamegahara Hockey Stadium in Japan today. In the Women's Under-18 Asia Cup, India progressed to the semi-finals after remaining unbeaten in the group stage and will face China today. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
2: Thank you, Naresh. On its front page under the headline, Push for India-Venezuela Ties, Hindustan Times carries a picture of Prime Minister Narendra Modi and Venezuela's acting president Delcy Rodriguez. The paper says the two leaders held talks on forging a long-term energy partnership and collaboration in pharmaceuticals and critical minerals. India-Venezuela vow deeper energy ties, writes the Tribune. As a court sent Lokesh Bajaj, owner of the hotel where 21 people were killed in a devastating fire, to police custody, the Delhi government said it would withdraw its bed and breakfast policy, reports the Pioneer. A picture on its front page shows family members at the last rites of the victims of the fire under the headline, Eight Fires, One Broken Family. Still seething with anger at the Congress ditching it and switching over to the TVK immediately after the Tamil Nadu Assembly elections, the DMK announced its decision to boycott the INDIA block meeting slated for the 8th of June, says a top headline in the Statesman. Rebel Rita Brata's expulsion from TMC void, writes the Asian Age, quoting the West Bengal Assembly Speaker, adding that there are 61 MLAs in the rebel camp. In its editorial titled Funding India's Climate Future, a $1 trillion question, the Hindu writes that India will require roughly $2.5 trillion by 2030 to meet its nationally determined contributions. Over the longer term, the cost of achieving net zero emissions by 2070 is estimated at $10.1 trillion, nearly three times India's current GDP. And finally, in what climbers are calling a miracle, 52-year-old Sherpa guide, who was presumed dead at Mount Everest after he vanished during descent on May 29th, was found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives 6-day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
0: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasana Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार करार दिया है। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत जा रहे हैं, जहां वो सड़कों, बिजली और सनअती शोबों में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी पहले हाजिरा जाएंगे और सनअती और बुनियादी ढांचे के मौजूदा प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दोपहर को एक बड़े जलसायाम से खिताब करेंगे। जनाब मोदी शाम को दमन जाएंगे और तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: इलाकाई बुनियादी ढांचे को खास तौर से फरोग देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 8 लेन वाले वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वजीर आजम कबायली खितों और मुजस्मा इत्तेहाद तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कौमी शाहरा 56 पर अहम हिस्से को 4 लेन बनाने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अवामी फलाह बहबूद की खातिर वो सूरत में एक जदीद 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो 24 घंटे इमरजेंसी और ट्रॉमा खिदमात फराहम करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ अहम और सनती बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों का भी आगाज किया जाएगा, जिनमें गुजरात में तरसीली निज़ाम की तौसी और वलसाड़ में बिजली की तकसीम की जदीद कारी शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
3: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी योग आसन चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो जब अपने अपने वतन वापस जाएं तो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफ़ीर बने। अहमदाबाद में चैम्पियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आयुष की वजारत ने योग के साथ पूरे साल सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने और सभी तबकों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए योग 365 का आगाज किया है।
5: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
3: वजीर आजम ने कहा कि ये चैंपियनशिप खेल मुकाबले से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है और इससे दुनिया भर में योग के वसी तर पैगाम की तशहीर का मौका फराहम हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपने 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में माली पॉलिसी कमेटी की जानिब से किए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। 6 अरकान पर मुश्तमिल माली पॉलिसी कमेटी ने बुध के रोज 3 रोजा तबादला ख्याल का सिलसिला शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी अहम पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं की थी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
6: सरकार ने अफराद ज़र की शरह पर मबनी अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया 4% तय किया है। मरकजी बैंक के लिए इसकी बालाई हद 6% और निचली हद 2% रखी गई है। अप्रैल के महीने में अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया मामूली बढ़कर 3.48% हो गया और ऐसा सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ रसोई की कुछ अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ। चूंकि अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया तय की गई हदूद के अंदर है, लिहाजा इक्तसादी माहरीन ये उम्मीद कर रहे हैं कि अहम शरह सूद 5.25% की सतह पर ही बरकरार रहेगी। उनका यह भी कहना है कि मगरबी एशिया महास आरआई की वजह से इफरात जर की शरह और माशी तरक्की को लाहक चैलेंजेस के तनाजुर में रिजर्व बैंक मोहतात रवैया अख्तियार करेगा। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
3: लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 97 साल के थे और तवील अरसे से बीमार थे। डॉक्टर कश्यप साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली आला सतह की उस कमेटी में शामिल थे जो एक साथ इंतखाबात कराए जाने के बारे में कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए तश्कील दी गई थी। वो 1983 से लेकर 1990 तक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फायज रहे। डॉक्टर कश्यप 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ڈاکٹر کشیپ نے اپنے مطالعے، علم، تصانیف اور عوامی خدمت کے ذریعے بھارت کے آئین اور پارلیمانی

0: आज अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान आज साहली आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहेगा। आज जापान के ककामी गहारा स्टेडियम में 18 साल तक की उम्र के मर्दों के एशिया कप के हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। पूल ए में 9 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल करने के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारतीय टीम का ग्रुप मरहले का आखिरी मैच चीनी ताइपे के साथ था, जिसे उसने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 13-1 से जीता था। भारतीय टीम को सिर्फ जापान के हाथों शिकस्त का सामना हुआ था। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में या तो जापान या पूल बी की सबसे ऊपर रहने वाली टीम का मुकाबला करेगी। खवातीन के अंडर 18 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप मरहले में कोई भी मैच न हारने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है और आज भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उसका चीन से मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, वेनेजुएला की कारगुजार सदर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम आज गुजरात दादर नगर हवेली में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफाए अव्वल पर जगह दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का यह बयान भी नुमाया अहमियत के साथ शाये हुआ है कि खुद किफालत के लिए मुतबादिल तवानाई जरूरी है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के तावुन से बने डिजिटल पोर्टल का ऐलान। मगरबी बंगाल की कानूनसाज असेंबली ने कौमी ई विधान एप्लीकेशन के निफाज के लिए मुफाहमत पर दस्तखत किए। कुछ बैन अलावामी खबरें इस तरह से हैं, अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप की आमरियत को रोका, तुर्की और सऊदी अरब की आबनाए हरमुस के मुतबादल के तौर पर रेल रूट पर गुफ्तगू।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योगा 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमरीका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 330.0 मीटर यानी 900 kHz और FM 100.1 MHz पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का प्रोग्राम हिट सुपर हिट बस अब से कुछ ही देर में।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

श्रोताओं, हर साल 5 जून को दुनिया भर के लोग हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साथ आगे आते हैं। साफ हवा, शुद्ध पानी, हरे भरे जंगल और हेल्दी इकोसिस्टम हमारी इस वसुंधरा के भविष्य के लिए जरूरी है। आज के हिट सुपरहिट प्रोग्राम में मैं श्वेता ऐसी ही सुपरहिट बातें करूंगी और प्रोग्राम का पहला गाना सुनवाऊंगी रोजा फिल्म से। गीतकार पीके मिश्रा, आवाज एसपी बाला सुब्रमण्यम, चित्रा की, संगीतकार एआर रहमान।

रोजा फिल्म से भी आपने कार्यक्रम का पहला गाना सुना। श्रोताओं, आज 5 जून को हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेचर, ये प्रकृति हमें वो सब देती है जिसकी हमें ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें बस पेड़ लगाने हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, पानी बचाना है और एनर्जी बचानी है। ये तो है छोटे छोटे काम, लेकिन बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगला गाना आपकी खिदमत में हमने लिया है ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म से आवाज़ मोहित चौहान, अरिजीत सिंह, संगीतकार प्रीतम, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य।

श्रोताओं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक सफ़र है, सफ़र जो हमें याद दिलाता है कि नेचर की रक्षा करना सिर्फ सरकार और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें चुनकर हम एक साफ़ और ग्रीन दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं और अपने इस सफ़र को और भी स्वच्छ और हरा भरा रख सकते हैं। तमाशा फिल्म से अभी आपने लकी अली की आवाज़ में ये गाना सुना जिसे लिखा था इरशाद कामिल ने, म्यूज़िक दिया था एआर रहमान ने। अगला गाना हमने स्वदेश फिल्म से लिया है, आवाज़ उदित नारायण हरिहरन और कैलाश खेर की।

श्रोताओं, प्रोग्राम हिट सुपर हिट आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से श्वेता के साथ। आप हैं हमारे साथ, मिलकर हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।

एलिसा मेंडोसा और मोहित चौहान की आवाज़ में भी आपने ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा इस फिल्म से ये गाना सुना। श्रोताओं, आइए आज हम नेचर का सम्मान करने, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी कीमती रिसोर्सेज को बचाने का वादा करें। हम सब मिलकर एक हेल्दी प्लानट बना सकते हैं और फिर सभी के लिए एक पक्का बेहतर कल।

इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्पेशल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, एनवायरनमेंट को बचाने की दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम मायने रखता है। ग्रीन रहें, जिम्मेदार रहें और सुनते रहें आकाशवाणी गोरखपुर श्वेता के साथ। सुबह के 9:00 बजकर

खुले आसमान में फिर से उड़ना है, मिट्टी की खुशबू में साथ मिलके सबके रहना है। श्रोताओं, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्पेशल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, एनवायरनमेंट को बचाने की दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम मायने रखता है। ग्रीन रहें, जिम्मेदार रहें और सुनते रहें आकाशवाणी गोरखपुर श्वेता के साथ। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। जिले की हलचल के लिए आइए चलते हैं लखनऊ स्टूडियो।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
1: राम मंदिर परिसर स्थित नवनिर्मित मां भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंबरा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धन ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ही मात्र शक्ति भी मौजूद रहीं। दोनों साध्वियों ने इसे राम मंदिर आंदोलन के लंबे संघर्ष, त्याग और सनातन स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। ध्वजारोहण के साथ पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। रामनगरी अयोध्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सौगात दी है। जिले के मौशीवाला क्षेत्र में 17.72 करोड़ रुपए की लागत से लौकुश पार्क विकसित किया जाएगा। कचरे से कला थीम पर बनने वाले इस पार्क में स्क्रैप सामग्री से रामायण के प्रमुख प्रसंगों को 3D इंस्टॉलेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। आधुनिक साउंड लाइट शो, डिजिटल तकनीक और इंटरएक्टिव मॉडल के जरिए श्रद्धालु रामायण काल के विभिन्न प्रसंगों से साक्षात कर सकेंगे। पार्क में आकर्षक उद्यान, वॉकवे, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि
2: अयोध्या नगर निगम के द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी अंतर्गत 17.72 करोड़ का लकुश पार्क वेस्ट वंडर पार्क सुकृत हुआ है।
1: अयोध्या में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। सिविल लाइन, ईदगाह सहित सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज सकुशल संपन्न हुई। DM शशांक त्रिपाठी और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी की। सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के दौरान देश दुनिया में

0: मन शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अयोध्या में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन बताया। मंत्री ने कहा कि करीब 54 लाख विद्यार्थियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक जैसी घटना सामने नहीं आई। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के 7वें बैच के 835 अग्निवीरों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में कदम रखा। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण अवधि में जवानों को आधुनिक युद्ध कौशल, शारीरिक दक्षता और सैन्य मूल्यों का प्रशिक्षण दिया गया। परेड की समीक्षा ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने की और जवानों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने कहा,
1: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में ज्वाइन करेंगे।
0: अयोध्या नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। राम की पैड़ी और नया घाट से अभियान का शुभारंभ हुआ। नगर निगम क्षेत्र के लगभग 400 स्थानों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों सफाई कर्मियों सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। नगर निगम ने शहर वासियों से भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आह्वान किया कि निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में इक्ष्वाकु वंश की विशेष हाईटेक गैलरी बनाई जाएगी। डिजिटल तकनीक के माध्यम से भगवान श्री राम की 63 पीढ़ियों का इतिहास दर्शाया जाएगा। दर्शक डिजिटल प्रतिकृतियों के जरिए राजाओं के शासनकाल, धार्मिक महत्व और वंश परंपरा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह गैलरी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। राम मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या में निवेश का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अमिताभ बच्चन के बाद अब अभिनेता रणबीर कपूर ने भी विगत दिन तिहरा मांझा क्षेत्र में 2.42 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। बताया जा रहा है कि यह भूखंड राम मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे अयोध्या में रियल इस्टेट और निवेश गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा दशहरा और बड़े मंगल के अवसर पर अयोध्या के सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्नान और पूजा करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। पर्व को लेकर घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी करता रहा। अयोध्या में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर जल प्याऊ और ORS वितरण के केंद्र स्थापित किए गए हैं।
2: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग लाइंग ने गौतम बुद्ध नगर के NTPC लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया, जिसमें म्यांमार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। इस मौके पर NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह तथा NTPC नेट्रा के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति एवं प्रतिनिधि मंडल को NTPC की विकास यात्रा, म्यांमार में कंपनी की पूर्व गतिविधियों तथा वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने वाली अनुसंधान, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिनिधि मंडल ने नेट्रा की अत्याधुनिक इन हाउस पायलट सुविधाओं का भी अवलोकन किया, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन हब तथा कृषि एवं नगर ठोस अपशिष्ट गैसीकरण से विद्युत संयंत्र शामिल था। राष्ट्रपति ने NTPC की स्वच्छ ऊर्जा पहलों में विशेष रुचि दिखाई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा स्थित बैटरी पुनर्चक्रण एवं महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र की कंपनी लोहम के अत्याधुनिक संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की तकनीकी क्षमताओं, बैटरी रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं और भारत में हरित ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की। दौरे के दौरान मंत्री ने लिथियम आयन बैटरी के पुनर्चक्रण, महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी तथा ऊर्जा भंडारण समाधानों से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों, उत्पाद क्षमता और भविष्य की विस्तार योजनाओं की जानकारी दी। श्री फैसलों ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बैटरी रिसाइकिलिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति देश की आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नवाचार आधारित कंपनियां भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। दौरे में मंत्रालय और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी आपूर्ति श्रृंखला तथा उभरती प्रौद्योगिकी के विकास पर भी चर्चा हुई। गर्मी की छुट्टियों में जनपद गौतमबुद्ध नगर में बच्चों में शिक्षा के साथ खेल प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन कर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। जिलाधिकारी ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि शतरंज मानसिक विकास, धैर्य, एकाग्रता एवं रणनीतिक सोच को विकसित करने वाला महत्वपूर्ण खेल है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में अलग अलग स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
4: इस गर्मियों की छुट्टियों में विभिन्न हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट द्वारा अरेंज किए जा रहे हैं एंड सभी बच्चे आमंत्रित हैं। पूरे गौतम बुद्ध नगर के सभी बच्चों के लिए काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं एंड पार्टिसिपेट करें एंड इसमें गर्मी का भी विशेष रूप से हम लोगों ने ध्यान रखा है।
3: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एफ काम होल्डिंग लिमिटेड और एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी हुई। इस समझौते के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कार्गो संचालन को विकसित और विस्तारित किया जाएगा, जिससे उत्तर भारत में एयर कार्गो कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस साझेदारी के तहत AF काम अपने मालवाहक विमानों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेस करेगा और यहां से फ्रेटर सेवाओं का संचालन करेगा। इससे एयरपोर्ट को उत्तर भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक और कार्गो हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। समझौते के दायरे में तीनों संस्थाएं मिलकर संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पहचान करेंगी और कार्गो मांग एवं फ्लो के आधार पर मजबूत नेटवर्क प्लान तैयार करेंगी। साथ ही परिचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं के समन्वय के साथ संयुक्त मार्केटिंग रणनीति भी बनाएंगी, ताकि एयर कार्गो संचालन को दीर्घकालिक मजबूती और स्थिरता मिल सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मुख्य परिचालन अधिकारी किरण जैन ने कहा कि यह साझेदारी एयरपोर्ट पर मजबूत एयर कार्गो इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि समर्पित फ्रेटर संचालन और उद्योग भागीदारों के सहयोग से क्षेत्र की कार्गो क्षमता को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्तर भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: यह आकाशवाणी गोरखपुर है। श्रोताओं, देशभक्ति का असली एहसास तब होता है जब एक गीत सुनते ही दिल गर्व से कहता है, मेरा भारत महान, और जब भारत माता के चरणों में आसमान भी झुक जाता है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश कान, ये आकाशवाणी गोरखपुर है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: इसमें आइए सुनते हैं बदलता मौसम, बढ़ती बीमारियों के मुतालिक गुफ्तगू। आज के मेहमान हैं डॉक्टर जगदम्बा दुबे और डॉक्टर मोहम्मद अहमद। समनुदेशिती है सैयद मोहम्मद उमैर की। आइए सुनते हैं
2: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामिन, बदलते मौसम के साथ इंसानी सेहत पर मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। कभी शदीद गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश और कभी हवा में बढ़ती आलूदगी मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देती है। मौजूदा दौर में मौसमी तब्दीलियां न सिर्फ माहौल बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही हैं। नज़ला, जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया, एलर्जी और सांस की बीमारियां ऐसे ही मसाइल हैं जो मौसम की तब्दीली के साथ तेजी से फैलते हैं। दोस्तों, आज की मसरूफ तर्ज जिंदगी में लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में गफलत बरतते हैं, जिसके नतीजे में बीमारियां ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुतवाजिन गिजा, सफाई, मुनासिब लिबास, साफ पानी का इस्तेमाल और बर वक्त इलाज ऐसी एहतियातें हैं जो मौसमी बीमारियों से बड़ी हद तक महफूज रख सकती हैं। इसी के पेश नज़र आज हमने अहतमाम किया है एक मुबाहिसे का। मौजू है क्लाइमेट चेंज, बदलता मौसम, बढ़ती बीमारियां। इस उन्मान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर जगदम्बा दुबे साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब और नाचीज सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने दोनों खसूसी मेहमान का आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बगैर किसी तमीद ताखिर डॉक्टर जगदम्बा दुबे साहब से सवाल है। दुबे साहब, मौसमी तब्दीली के मद्देनज़र स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दफातर में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए किन एहतियाती तदाबीर की जरूरत है, इस पर हमारे सामीन के लिए वजाहत फरमाएं।
3: बहुत शुक्रिया। मौसम में तब्दीली के वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर में खुसूसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना बहुत जरूरी
2: जी।
3: सबसे पहले सफाई पर खास तवज्जो देनी चाहिए, कमरों में मुनासिब रोशनी हो और हवा के आने जाने का इंतजाम होना चाहिए। पीने के लिए साफ पानी मुहैया किया जाए और हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। तलबा और मुलाजमीन को जाती सफाई बरकरार रखने की तरगीब दी जानी चाहिए। बीमार अफराद को आराम करने और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा लेने की सहूलत दी जानी चाहिए। वक्तन फवक्तन सेहत से मुतालिक आगाही प्रोग्राम भी मुनक़द किए जाएं ताकि लोग बदलते मौसम में एहतियात कर सकें। इसके साथ ही साथ तलबा खूब पानी पिएं और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सादे पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी या ORS का इस्तेमाल करें। हल्का और ताज़ा खाना खाएं, तला भुना या बासी खाने से परहेज करें।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा कह रहे हैं कि आप मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए तालीमी इदारों और दफातीर में सफाई, साफ पीने का पानी, मुनासिब वेंटिलेशन, हाथ धोने की आदत और बीमार अफराद को आराम की सहूलत फराहम करना बहुत जरूरी है, इसलिए इन तमाम चीजों का खास तौर से ख्याल रखा जाए। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर अहमद साहब से एक सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे सामीन को आप ये बताएं कि मौसम की तब्दीली के साथ कौन कौन सी बीमारियाँ आम तौर पर ज्यादा फैलती हैं, इस पर आप क्या कहते हैं?
4: हम एक बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर तरह के मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बारिश। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां ऐसे कोई मौसम नहीं होते। किसी के यहाँ हमेशा जाड़ा पड़ता है, किसी के यहाँ गर्मी पड़ता है और किसी के यहाँ हमेशा बारिश होती रहती। लेकिन यह हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोगों ने ऐसे मुल्क में जन्म लिया जहाँ हर तरह का मौसम है। लेकिन इसमें इस फायदे के साथ कुछ परेशानियां भी हो सकती है। जब एक मौसम खत्म होने वाला होता है और दूसरा मौसम आने वाला होता है तब वातावरण में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जैसे वायरल फीवर है या चिकनगुनिया है या मलेरिया है। ये सब ऐसे बीमारियां हैं जो बदलते मौसम के साथ साथ अपने उरूज पे आ जाते हैं।
2: बहुत अच्छा कहने आप कि मौसमी तब्दीली के साथ नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, एलर्जी, डेंगू, मलेरिया आपने अभी बताया, और सांस की बीमारियां जैसी बीमारियां आम तौर पर फैलती नजर आती हैं जैसे ही मौसम तब्दील होता है। मौसम की तब्दीली में जरूरत इस बात की है कि पहले से इंसान थोड़ा सा एहतियात बरते और इन तमाम चीजों के बचाव के लिए अपनी कोई भी तदबीर पहले से इख्तियार करे या जहन को पहले से तैयार रखे। बहुत अच्छा आपने बताया। एक सवाल दुबे साहब से करेंगे। दुबे साहब, शहरी आबादी में इजाफा और तेजी से बढ़ती तामीरात के दरमियान सड़कों के किनारे घने दरख्त लगाने, पार्कों की तामीर और छतों पर बागबानी की कितनी अहमियत है मौजूदा दौर में, इस पर आप क्या कहते हैं?
3: बढ़ती हुई शहरी आबादी और तेजी से होने वाली तामीरात के बाइस हरियाली कम होती जा रही है
2: जी।
3: ऐसे में सड़कों के किनारे घने दरख्त लगाना, पार्क बनाना और छतों पर बागबानी कराना बेहद जरूरी है
2: जी।
3: दरख्त माहौल को साफ रखते हैं, ऑक्सीजन फराहम करते हैं और दर्जे हरारत को मतवाजन रखते हैं
2: जी।
3: पार्क लोगों को वर्जिश और जहनी सुकून का मौका देते हैं। छतों पर बागवानी से घरों का दर्जे हरारत कम रहता है और माहौल खुशगवार बनता है। दरख्त के साये से डामर की सड़कें कम गर्म होती हैं और अर्बन हीट का असर कम होता है। इसके साथ ही साथ दरख्त धूल, मिट्टी और जहरीली हवाओं को सोख लेते हैं। ये दरख्त काफी हद तक गाड़ियों के शोर को भी कम करते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हवा में नमी बनाए रखते हैं। सड़क के किनारे कतार में लगे दरख्त पैदल और साइकिल से चलने वालों को धूप और बारिश से भी बचाते हैं।
2: बहुत अच्छा कहा आपने कि दरख्त, पार्क और छतों पर बागबानी माहौल को ठंडा रखने, आलूदगी कम करने, ऑक्सीजन बढ़ाने और अवामी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा खूब ज्यादा दरख्त लगाएं और छतों के ऊपर बागबानी की जा सकती है। यहाँ पर एक सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि घरेलू टोटके बहुत होते हैं, बीमार कोई पड़ गया तो कोई ना कोई टोटका इख्तियार कर लिया, तो ऐसे में देसी इलाज और घरेलू टोटके मौसमी बीमारियों में मौसी साबित हो सकते हैं या डॉक्टर्स हजरात से रुजू करना बहुत जरूरी है, इस पर आप क्या कहते हैं?
4: जब मौसम बदल रहा होता है तब उस वक्त हम लोगों को बहुत परहेज करने की जरूरत है। किसी ने कहा है कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो हम अपने आप की अंदर की इम्यूनिटी को इतनी मजबूत कर दें कि किसी भी तरह की बीमारी के लिए कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है हमारे अंदर आ ही ना पाए। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को हाइड्रेट करें, पानी खूब पिए और खाना एक वक्त में ज्यादा खाने के बजाय कई बार में थोड़ा थोड़ा करके खाएं, और पीने के लिए साफ पानी और खाने में सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। सलाद और हरी सब्जियों का इस्तेमाल, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। और इसके साथ साथ नींबू पानी का भी इस्तेमाल करें और इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी ये एक देसी इलाज है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और अगर बीमारी आ ही जाती है तो उसके लिए आप डॉक्टर से रابطہ कायम करें।
2: बहुत अच्छा कहा आपने कि मामूली मौसमी बीमारियों में बाज घरेलू टोटके फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन शदीद अलामात, मुसलसल बुखार या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर्स से रुजू करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरफ तवज्जो देने की खास जरूरत है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आज के वक्त में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो एक सवाल आपसे इसी के ताल्लुक से करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसानात और बढ़ते हुए प्लास्टिक के कचरे के पेश नजर आम इंसान रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे कौन से इकदाम कर सकता है जिनसे इन कचरों की रोकथाम मुमकिन हो सके, जैसे हम प्लास्टिक के बजाय कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं?
3: बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सिंगल यूज प्लास्टिक माहौल के लिए नहायत नुकसानदेह है
2: जी।
3: इससे जमीन, पानी और हवा आलूदा हो जाती है। आम इंसान कपड़े के थैले इस्तेमाल कर सकता है, प्लास्टिक की बोतलों की बजाय स्टील या शीशे की बोतलें इस्तेमाल कर सकता है और काबिले इस्तेमाल अशिया को दोबारा इस्तेमाल कर सकता है
2: जी।
3: प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने के बजाय मुनासिब जगह पर डालना चाहिए। ये हजारों साल तक मिट्टी में नहीं सड़ता और जस का तस बना रहता है। इसको जलाने से जहरीली गैस निकलती है। प्लास्टिक के टुकड़े मिट्टी में पानी और हवा के बहाव को रोकते हैं।
4: जी,
3: सिंगल यूज प्लास्टिक के बारीक जर्रे खाने और पानी के जरिए हमारे जिस्म में भी दाखिल हो रहे हैं, जिससे गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। अगर हर फर्द अपनी रोजमर्रा आदत में मामूली तब्दीली लाए तो प्लास्टिक के कचरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
4: बहुत अच्छा कहा डॉक्टर साहब आपने कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी, कपड़े के थैलों का इस्तेमाल, प्लास्टिक की रिसाइकिलिंग और गैर जरूरी प्लास्टिक अशिया से गुरेज कचरे की रोकथाम में मददगार साबित हो सकते हैं, लिहाजा इस तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत उम्दा आपने बात कही। एक सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे, डॉक्टर अहमद साहब, के फिजाई आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली मौसमी बीमारियों में किस हद तक इजाफा कर रही है? नीज बदलते मौसम में पानी और गजा की सफाई कितनी अहमियत रखती है, इसकी वजाहत फरमाएं।
5: भारत एक ऐसा देश है जिसकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ ही सालों में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब रहने की जगह तो सीमित है, लेकिन उस जमीन को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन रहने के लिए पेड़ पौधों को कटाई की जा रही है, जिससे पेड़ पौधे की आप संख्या कम होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक प्रमुख पॉल्यूटेंट है हवा में पाया जाने वाला, और ये जो पेड़ पौधे होते हैं तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वातावरण जो सही होता है, वातावरण में प्योरिटी होती है। और पेड़ पौधों की कटाई होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वातावरण का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर हमें इससे पर होना है तो हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे।
4: बिल्कुल। तो फिजाई आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली सांस और एलर्जी की बीमारियों में इजाफा करती है, जैसे अभी आपने कहा, जैसे कि पेड़ पौधों का भी डॉक्टर साहब ने तस्करा किया। तो एक सवाल डॉक्टर तोफे साहब से करेंगे कि ऐसे कौन से दरख्त और पौधे हैं जो साया फराहम करने के साथ साथ फिजाई आलूदगी को कम करने में भी मौसर साबित होते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं?
3: बहुत उम्दा सवाल किया आपने। नीम, पीपल, बरगद, अशोक, तुलसी, एलोवेरा और अमलतास जैसे दरख्त हवा को साफ करने में बहुत मौसर हैं।
4: जी,
3: नीम अपनी दवाओं जैसी खसूसियात के लिए मशहूर है, तो पीपल और

0: को बेहतर रखता है और करी पत्ता का इस्तेमाल खाने का जायका बढ़ाने और अच्छी सेहत के लिए किया जाता है, इसलिए ये दरख्त हमारे लिए बेहद मुफीद है।
1: तो बहुत उम्दा आपने कहा कि नीम, पीपल, बरगद, अर्जुन, अशोक और दूसरे तमाम ऐसे दरख्त जिनके नाम अभी आपने लिए, साया फराहम करने में या फिजाई आलूदगी को कम करने में मौसर साबित होते हैं, लिहाजा इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना या इनको ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में बागबानी के लिए लगाना बहुत अहम साबित हो सकता है। अब यहाँ पर एक आखिरी सवाल डॉक्टर अहमद साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम के पेश नजर हमारे सामीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो बदलते मौसम में अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सके?
2: इस बदलते मौसम में अपने आप को चुस्त और दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए हमें खान पान और अपने आसपास की साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और हमारी इम्यूनिटी जो है मजबूत रहे, और जो वेक्टर हैं जैसे डेंगू है और मलेरिया है जहाँ पे ये इनका रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद अंडे जो देती है ये पानी में देती है, और अपने घर के आसपास पानी को ना इकट्ठे होने दिया जाए। जैसे कूलर में पानी इकट्ठा है तो उसको हटा दे, या नाली है तो उसको साफ सफाई रखें, उसमें समय समय पे मिट्टी का तेल डालते रहे जिससे इनके मच्छर के लार्वे जो है सांस नहीं ले पाएंगे और ये मर जाएंगे।
1: तो बहुत उम्दा आपने पैगाम दिया कि मौसम की तब्दीली के दौरान मुतवाजिन गिजा, मुनासिब पानी, सफाई, वर्जिश और बर वक्त तिब्बी मशवरे को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि सेहतमंद रहा जा सके। और अब हम अपने दोनों खसूसी मेहमान जनाब डॉक्टर जगदम्बा दुबे साहब और जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामीन के लिए बहुत ही उम्दा मालूमात फराहम की। सामीन, अब हम बज्म के माहौल को तब्दील करते हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक नात।

0: سامین ابھی آپ ایک نعت سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجئے اجازت، آداب۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اردو پروگرام، آج کی پیشکش تھی آکاش وانی لکھنؤ کے مرکز سے۔
2: یہ آکاش وانی کا گورکھپور کیندر ہے، سگم سنگیت۔ یہ پروگرام بس اب سے کچھ ہی دیر میں۔
3: कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि रेलवे ट्रैक पर ना तो स्वयं जाएं और ना ही पशुओं को जाने दें। इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि रेलवे ट्रैक पर ना तो स्वयं जाएं और ना ही पशुओं को जाने दें। इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत के प्रोग्राम में गुलाम मोहम्मद कासिर का एक शेर अर्ज करती हूँ। करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। और अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। समय है समाचारों का, अब से कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक संस्कृति का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि देश की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग भी है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत का प्रोग्राम गाते गुनगुनाते अब से कुछ ही देर में।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

तू है तो राहों में उजाला सा लगता है, तू है तो हर ख्वाब निराला सा लगता है। दुनिया की भीड़ में भी दिल तन्हा नहीं रहता, तेरा साथ हो तो हर लम्हा प्यारा सा लगता है। श्रोताओं, इसी एहसास का गीत अभी आपने सुना कि जब मोहब्बत अपनी मंजिल बन जाए तो और किसी ख्वाहिश की ज़रूरत महसूस नहीं होती। फिल्म थी ज़रा हट के ज़रा बच के, और अब न चांद की तमन्ना न सितारों का जुनून, तेरी बाहों में मिल जाता है हर खुशी का सुकून। जो मिल गया तेरा साथ तो मुकम्मल हुई दुआ। अगला गीत मोहब्बत की उस मंजिल को छूता है जहां दिल को और कुछ पाने की आरजू नहीं रहती। फिल्म है स्काई फोर्स।

केके की आवाज में अभी आपने गैंगस्टर फिल्म से ये गाना सुना। श्रोताओं, जब जिंदगी की असली दौलत किसी अपने का साथ होता है, ना बड़े बोल हों, ना ही शोर शराबा और ना कसमें वादे हों, बल्कि एक सुकून भरा एहसास और उनका साथ हो, ऐसा ही गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। ये गाना दिल के बहुत करीब जाकर अपनी बात कहता है और मेरा फेवरेट। हमने लिया है मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, कभी कभी प्यार लफ्जों से नहीं, सिर्फ एक मुस्कुराहट से समझ में आता है। ये गीत उसी खामोश मोहब्बत का नगमा है जो अब मैं आपको सुनवाने जा रही हूं। फिल्म है युवराज। जब दो दिल एक दूसरे से अपनी पूरी दुनिया ढूंढ लेते हैं तो अपनी प्रियसी और प्रियतम के लिए बस यही दुआ निकलती है।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाते गुनगुनाते श्वेता के साथ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर के साथ आप एक खूबसूरत गीतों के सफर पर हैं। प्रोग्राम है गाते गुनगुनाते। अगला गाना, तू है तो ये जमी भी जन्नत सी लगती है, तू है तो हर दुआ कबूल सी लगती है, ये तेरा ही संसार सारा, ये तेरा ही नूर है, तेरे होने से ही जिंदगी में रंगों का सुरूर है। गाना लिया है हमने फिल्म मोहन जोदाड़ो से।

जन्नत फिल्म का ये खूबसूरत गाना था, और अब डियर जिंदगी फिल्म का ये गाना जो कहता है जिंदगी मुझे कहीं भी ले जाए, मेरा दिल तुम्हारे पास लौटता रहता है, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो सब कुछ सही महसूस कराते हो।

वो इंसान जिसे दिल ने सबसे ऊपर चुना है, जिसमें भरोसा, समर्पण और हमेशा साथ रहने का वादा किया है, फिल्म है ये वादा रहा।

श्रोताओं, जब आपका साथ हो तो इसी तरह की प्लेलिस्ट तैयार होती है गाते गुनगुनाते इस प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ थी श्वेता, और कार्यक्रम प्रसारित किया गया आकाशवाणी गोरखपुर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। बैंक ने अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों द्वारा इक्विटी उपकरणों में निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम श्री मोदी का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह अत्याधुनिक एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार प्रणालियों और स्वचालित मौसम स्टेशनों के विस्तारित नेटवर्क के साथ मौसम संबंधी प्रेक्षणों को एकीकृत करेगा, जिससे वास्तविक समय में मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान की सटीकता और पूर्व चेतावनी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलू ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में अभी आप सुन रहे थे कृष्णानंद त्रिपाठी को। वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का।
1: आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप।

0: कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि रेलवे ट्रैक पर ना तो स्वयं जाएं और ना ही पशुओं को जाने दें। इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
0: कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि रेलवे ट्रैक पर ना तो स्वयं जाएं और ना ही पशुओं को जाने दें। इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: जिंदगी बहुत कीमती है,
5: उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात direct to home की और direct to heart?
8: ये सारे चैनल्स होंगे free to air, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात direct to heart की।
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details, log on to www.ddindia.com।
9: लोकगीत के कार्यक्रम में अब आप सुन रहे हैं ब्रिज किशोर त्रिपाठी को।

बृजकिशोर त्रिपाठी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से। इस लोकप्रिय रोमांटिक गीत को सलीम मर्चेंट, नीति मोहन और शेखर रविजियानी ने अपनी आवाज़ दी है। इस गाने का म्यूजिक विशाल शेखर द्वारा कंपोज किया गया है।

0: मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और सोहेल सेन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे एक था टाइगर फिल्म से ये गीत।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है। आकाश

जो था अकबर से ये गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम और मधुश्री ने, साथ ही इसमें संगीतकार एआर रहमान की भी आवाज़ शामिल है। इस खूबसूरत गाने के बोल जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं और इसका संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है।

अभी आप सुन रहे थे वेक अप सर फिल्म से ये गीत, जिसे गाया था कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य ने, बोल थे जावेद अख्तर के, जिसे संगीत से सजाया अमित त्रिवेदी ने। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म फालतू से, जिसे आवाज़ दिया है आतिफ असलम ने और इस गीत को संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
3: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
3: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
2: जी,
3: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
2: जी,
3: इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
2: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
3: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
2: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
3: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
4: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: खास
3: ऐलान।
4: शांत शांत,
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए।
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज, बहुत
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ?
7: मुझे भी नकली मिला। मुझे भी नकली हो सकता है।
5: क्या क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
7: कैसे
5: हो
7: सकता है? नकली सकता?
5: नकली कैसे हो गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
7: महाराज
10: महाराज महाराज की जय। महाराज की जय।
3: महाराज की जय।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
5: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज। यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
1: कहिए, मेरी आज्ञा है। आप सभी निसंकोच कहिए।
5: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
5: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है। बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे

0: और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
1: महाराज की
2: जय।
1: महाराज की
2: जय।
1: महाराज की
2: जय।
3: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
6: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ।

तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल

0: शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के चार दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल,
4: पोंगलो पोंगल,
5: पोंगलो पोंगल।
3: उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: श्रोताओं, ये समय भारतीय प्रसारण जगत के लिए अत्यंत गौरव और उत्सव का अवसर है। देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक चेतना को स्वर देने वाली संस्था आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रही है। 9 दशकों की इस गौरवशाली यात्रा में आकाशवाणी ने करोड़ों श्रोताओं के जीवन को ज्ञान, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से समृद्ध किया है।

आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं बल्कि भारत की विविधता को जोड़ने वाला एक सशक्त सेतु है। यहाँ देश की अनेक भाषाओं, बोलियों, संस्कृतियों और परंपराओं को सम्मानपूर्वक स्थान मिला है। यही कारण है कि आकाशवाणी की आवाज़ भारत की आत्मा की आवाज़ मानी जाती है।

स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक आकाशवाणी ने अनेक ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने का गौरव प्राप्त किया है। देश के महत्वपूर्ण संदेश, राष्ट्रीय उपलब्धियां और जनहित की सूचनाएं वर्षों से आकाशवाणी के माध्यम से जन जन तक पहुंचती रही हैं।

आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम उन सभी प्रसारकों, कलाकारों, तकनीकी कर्मियों, कार्यक्रम निर्माताओं और करोड़ों श्रोताओं को नमन करते हैं जिन्होंने इस संस्था को नई ऊंचाइयां प्रदान की। आइए हम सब मिलकर कामना करें कि आकाशवाणी आने वाले वर्षों में भी ज्ञान, संस्कृति और जनसेवा की अपनी गौरवशाली परंपरा को इसी तरह आगे बढ़ाती रहे।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि रेलवे ट्रैक पर ना तो स्वयं जाएं और ना ही पशुओं को जाने दें। इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि रेलवे ट्रैक पर ना तो स्वयं जाएं और ना ही पशुओं को जाने दें। इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।

और बहनों, इस गीत के बाद हम आते हैं अपनी रसोई में और बात करते हैं कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कैसे प्लास्टिक फ्री किचन में योगदान दे सकते हैं। तो भाई, किचन में तो सबसे पहले अगर स्टोरेज को देखा जाए तो वहाँ अनाज मसाले रखने के लिए हम प्लास्टिक के डब्बों की जगह मिट्टी, स्टील या शीशे के जार यूज़ कर सकते हैं। और बहनों, अक्सर बचे हुए खाने को फ्रिज में रखना पड़ता है, यहाँ भी हमें सिरेमिक या कांच के बाउल्स का ही उपयोग करना चाहिए। और भाई, सबसे ज़रूरी बात, सब्जी और किराना का सामान लाने के लिए हमेशा घर से सूती या जूट का बैग, थैला लेकर जाएं। फ्रिज में बहनों अक्सर नींबू, मिर्ची, अदरक रखने के लिए भी हम छोटे छोटे मलमल के पाउच इस्तेमाल कर सकते हैं। बहनों, ये छोटे छोटे पाउच तो हम घर में भी बचे हुए कपड़ों का बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और अक्सर घरों में प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल होता है, वहाँ भी कॉटन भी वैक्स रैप या सूती गीले कपड़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और बहनों, अब आते हैं साफ़ सफाई की चीज़ों पर, जहाँ बर्तन धोने के लिए प्लास्टिक वाले स्क्रैपर्स यूज़ होते हैं, इसकी जगह हम नारियल के रेशे या लकड़ी के ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। लिक्विड सोप में केमिकल वाले लिक्विड की जगह नींबू, सिरका और रीठा जैसे प्राकृतिक क्लीनर्स को अपना सकते हैं। किचन में पानी रखने के लिए और पीने के लिए तांबे या मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करें, बोतल का इस्तेमाल करें। और भाई, चाय के बिना तो हर रसोई अधूरी है। कई जगह प्लास्टिक टी बैग्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि माइक्रो प्लास्टिक छोड़ते हैं। ऐसे में हमेशा खुली पत्ती वाली चाय ही यूज़ करें। मैनो, हम अभी हमने गार्डनिंग की बात की थी, तो भाई रसोई से निकलने वाले गीले कचरे को भी हम प्रोसेस करके खाद बना सकते हैं। और कचरा को किसी पुराने डब्बे या बाल्टी में इकट्ठा करें, इसमें फल और सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। ख़ास करके बहनों, अगर हम चाय की पत्ती और केले के छिलके को भिगो करके कई दिनों तक रखें और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देना, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसके साथ ही बहनों, हम जितनी भी सब्जियां धोते हैं, चावल धोते हैं, उसके पानी को भी पौधे में डालें तो वो पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और हाँ बहनों, दूध की थैलियों को काटने के बजाय कोशिश करें, अगर सुविधा हो तो कांच की बोतलों में दूध लें। तो बहनों, आप भी अपनी रसोई में प्लास्टिक का प्रवेश कम करें, धीरे धीरे अपनी रसोई से प्लास्टिक को हटाएँ और अपने किचन को प्लास्टिक फ्री बनाएँ। मैनो, कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो भाई भोजन इतना टेस्टी हो, शुद्ध हो कि खाने के बाद बस दिल कहे वाह क्या स्वाद है, भले ही वो सूखी रोटी ही क्यों ना हो, अगर प्रेम से खिलाई जाए तो बात ही अलग होती है।

भाई बात चल रही है पर्यावरण दिवस पर इसके संरक्षण की, तो ऊर्जा संरक्षण की भी बात हो जाए। तो भाई अपने घरों में नज़र दौड़ाया जाए तो हम सब भी कई तरह बिजली बचत के कई उपाय करते हैं। ज़्यादा रेटिंग वाले एसी लगवाते हैं, एलईडी बल्ब का उपयोग करते हैं और ऐसे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं जिसमें बिजली कम खर्च हो या ना हो। इसके लिए बहनों सब्जी बनाने की बात करें तो लहसुन प्याज टमाटर मिर्च मिक्सी में पीसने के बजाय हम चॉपर में भी चॉप करके बना सकते हैं। चाहे तो इन्हें पकाकर मैशर से मैश करके भी बना सकते हैं। तो भाई अगर आपके पास सिलबट्टा है तो कभी कभी मसाले उससे भी पीस कर बनाएं। बहनों सचमुच मसालों का स्वाद बढ़ जाएगा इससे। चटनी भी मिक्सी में पीसने के बजाय सिलबट्टे पर पीस कर बनाया जा सकता है। और बहनों कुछ छोटी छोटी आदतें भी बिजली बचत में काम आती हैं, जैसे कमरे से बाहर निकलते समय पंखे लाइट ऑफ करना, दिन में बल्ब का कम प्रयोग करना, इसके लिए दिन में खिड़की खोल कर रखें ताकि सनलाइट घर में आए, एसी के साथ साथ कम स्पीड पर छत का पंखा भी चलाएं, इससे कमरा जल्दी ठंडा होता है। टीवी चार्जर और कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड पर छोड़ने के बजाय स्विच से बंद करें। मैंने एसी और कूलर के फिल्टर को हर महीने साफ करने से भी बिजली कम खर्च होती है। तो मैंने भाई इस मौसम में तो खिड़की पर मोटे पर्दे भी ज़रूरी हो जाते हैं ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आए। फिलहाल बहनों आइए सुनते हैं ये गीत।

मैनू बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता कैसे हम लोग लाएं, ये सोचना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहनों इसकी पहल भी हमें ही करनी होगी, ताकि वो भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, चाहे वो बिजली बचत हो, जल संरक्षण हो, या हो सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम। ये आदतें बच्चे घर से ही सीखते हैं। बहनों अक्सर बच्चे वही सीखते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। जैसे आप जब पौधे लेकर आती हैं, बच्चे भी साथ में बैठ जाते हैं, वो भी कुड़ाई करते हैं, गमले में मिट्टी डालते हैं और फिर पौधे लगाते हैं आपके साथ साथ। बच्चों को सिखाएं जो पानी उनके स्कूल के बॉटल में बचा है उसे फेंके नहीं, उन्हें पौधों में डालें। एक बार बताकर तो देखिए, वो स्कूल से आने के बाद ठीक वैसा ही करेंगे डेली। साथ ही बहनों आपने देखा होगा कि आज के इस तकनीकी युग में बच्चों को मिट्टी से खेलने का तो मौका ही नहीं मिलता, जबकि हम जितना प्रकृति से जुड़ते हैं पौधों के बारे में सीखते हैं। जितना ही बच्चे पत्थरों को पलटकर उनके नीचे नीची छिपी हुई एक दुनिया की खोज करते हैं, वो उतना ही उसकी परवाह भी करते हैं। तो बहनों बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें सिर्फ खिलौने देने के बजाय उन्हें पौधारोपण भी सिखाएं। जैसे जैसे हम प्रकृति के करीब होते हैं, वैसे वैसे पशु पक्षी, नदी झरने, पेड़ पौधों की आवाज़ को हम पहचानने लगते हैं। सुबह उठकर एक बार आप अपने लगाए हुए पौधों को तो देखिए, फूल किस तरह से लहलहाते हुए झूम रहे होते हैं। इन्हें देखकर अनायास आप भी मुस्कुरा देंगी।

0: बहनों, इस गीत के साथ ही समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में बहुत सारी बातों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों की सूचना। नाम राज कपूर उर्फ गोलू, पुत्र राम श्रोमन, उम्र 38 वर्ष, ग्राम टाडा से लापता है। उनका रंग सांवला, लंबाई 5 फुट 6 इंच। उनका चेहरा लंबा है तथा वे घर से जाते समय शर्ट और जींस पहने हुए थे। यदि किसी व्यक्ति को राजकुमार उर्फ राज कपूर उर्फ गोलू के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो या वे कहीं दिखाई दें तो कृपया तत्काल थाना बढ़लगंज या इन नंबरों पर संपर्क करें 9454403501, 7380606450, 7518584050। आपकी एक छोटी सी सूचना किसी परिवार को उनके प्रियजन से मिलाने में सहायक हो सकती है। जनपद गोरखपुर के थाना कैंपियरगंज क्षेत्र से 17 वर्ष 9 माह की एक किशोरी विनीता कुमारी दिनांक 11 नवंबर 2024 से लापता है। उनके पिता का नाम रामू है तथा वह ग्राम रामनगर केवटलिया टोला गोसाईपुरवा थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर की निवासी हैं। उनका रंग सांवला, गोल चेहरा, कद लगभग 5 फीट, नाक कान एवं आँखें सामान्य हैं। पहनावा घर से जाते समय लाल रंग का सूट, नीला सलवार तथा दुपट्टा पहने हुई थी। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हो तो कृपया तत्काल इन नंबरों पर सूचना दें 9118250570, थाना कैंपियरगंज गोरखपुर 9454403505।

0: 9675759435 सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी।
1: किसान भाई बागवानी में सैगर आमदनी बा, एकर उत्पाद भी बाजार में खरीदार बहुत हुआ। और तो और अगर उच्च गुणवत्ता युक्त फल उत्पादन आप करत नहीं तो एकर गहकी विदेश में भी बाना, काफी मांग है। लेकिन सोचे के ई बा कि कौन कौन ऐसा फल हुआ जेकर विदेश में मांग बा, वो फल का विशेषता का होके की चाहिए, वो फल वाला पौधा का उपलब्धता कहाँ से प्राप्त हो सकेला। लेकिन आप लोगन के चिंता कैला का बात नहीं बा। आज हम फोन लाइन से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डिप्टी डायरेक्टर औद्यानिक फल शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती से टेलीफोन द्वारा बातचीत करत है कि आम का जवन रंगीन और विदेशी प्रजाति है उनका विशेषता का है, उनके लगावला से फायदा कितना मिल सकेला। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका फोन लाइन से जुड़ला खातिर धन्यवाद बा। आप हमारे बागवान भाई के बताई
2: आम की रंगीन प्रजातियों की आवश्यकता क्या है, तो इसमें हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि आम तौर पे जो हमारी पुरानी प्रजातियां हैं दशहरी, लंगड़ा, चौसा, लखनऊ सफेदा और पूर्वांचल में खास करके गौरजीत प्रजाति, इनको हम परंपरागत रूप से किसान भाई लगा रहे हैं। इनमें कुछ समस्याएं आती है कि गौरजीत जैसे अगेती फसल है, शुरुआत में आ जाती है और जल्दी ही खत्म हो जाती है। अलग पैसा तो अच्छा मिलता है लेकिन इसकी बहुत दिन तक रखने की गुणवत्ता नहीं है, बहुत दिन तक हम कमरे के टेम्परेचर पे रख नहीं सकते हैं, इसलिए बाहर भेज करके, विदेश भेज करके पैसा कमाना इस प्रजाति से संभव नहीं है। यही हाल होता है दशहरी और लंगड़ा में जो एक निर्धारित समय के लिए आती हैं 10-15 दिन के लिए, और आम का उस समय पीक होता है पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुत आम बहुतायत में होता है, एक साथ पकता है, दशहरी का नवरोजा कहलाता है और अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। दशहरी प्रजाति में भी यही हाल है, लखनऊ सफेदा में यही हाल है, इसको हम पकने के बहुत दिन बाद तक घर पे रख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आप किसान भाइयों की मजबूरी है कि ऐसी प्रजातियों का चयन करें, नए बाग लगाने जा रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो, बाजार में एक्सपोर्ट क्वालिटी, विदेशों में उनकी अच्छी मांग हो और स्वाद अच्छा हो, इसके साथ ही साथ उसको ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता हो। तो इसके लिए तमाम सारी नई प्रजातियां जो रंगीन किस्म की हैं, आकर्षक हैं, बड़े बड़े अच्छे माल में रख करके बेची जा सकती हैं, अच्छा पैसा मिलेगा, या विदेशों को भेजी जा सकती हैं जो उनको रखने की क्षमता अच्छी होती है। तो इसमें कुछ प्रजातियां जैसे पूसा श्रेष्ठा है, अनामिका है, अरुणिमा है, इसी तरह से हमारी जो यहाँ की प्रजातियां हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में है, उसकी एक प्रजाति है अंबिका और अरुणिका, पूसा सूर्या दिल्ली की प्रजाति है। इसके अलावा दो विदेशी प्रजातियां हैं टामी अटकिन और सेंसेशन, इनकी भी खेती किसान भाई आराम से अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की दशा में कर सकते हैं। अब देखना यह है कि ये चूंकि ड्वार्फ नेचर की छोटे बौने आकार की होती है, इसलिए इनको 10-10 मीटर की पुरानी दूरी पे न लगा करके 5-5 मीटर पे या 5-6 मीटर की दूरी पे लगाना चाहिए किसान भाइयों को, जिससे कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पौधे आएंगे और कटाई छटाई करके, नियमित कटाई छटाई करती रहें तो उनका आकार भी छोटा बनाए रखेंगे, जिससे कि सारे ऑपरेशन दवा डालना है या और कोई आम में फल में कवर चढ़ाना है बरसात से बचाने के लिए, फल मक्खी से बचाने के लिए, तो इसके लिए जरूरी है पौधा बहुत बड़ा 30-40 फीट ना होकर के 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट हो, अधिकतम 10 फीट तक हो। ये सारे काम आराम से किए जा सकते हैं और गुणवत्ता नियंत्रित होगी।
1: डॉक्टर साहब ये जितना आप प्रजात बताओ तनी, एकर पौधा कैसे मिली?
2: सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में बस्ती जनपद में इजराइल सरकार के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फल उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है, आम उत्कृष्टता केंद्र है, केवल आम के ही पौधे, इन विदेशी किस्मों के और जो अच्छी वाली किस्में हैं, नई प्रजातियां हैं, उनके पौधे बनाए जा रहे हैं और कीमत एकदम वाजिब रखी गई है, 50 रुपए प्रति पौधा कीमत है इसकी जो, और जो पुरानी प्रजातियां हैं दशहरी, लंगड़ा, चौसा, लखनऊ सफेदा, रामकेला, गौरजीत, इनकी कीमत 50 रुपए है और बाकी रंगीन प्रजातियों की कीमत 55 रुपए प्रति पौधा की दर से है। जो किसान भाई मध्य उत्तर प्रदेश से हैं, बीच की जो उत्तर प्रदेश है वहां से हमारा सेंटर है आम पौध उत्पादन का मलिहाबाद में, वहां से अच्छी प्रजाति के इन्हीं प्रजातियों के पौधे ले सकते हैं। जो किसान भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, वो हमारा एक सेंटर है सहारनपुर में, वहां से इन अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रजातियों के पौधे ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे हर जिले में जिला मुख्यालय पर करीब करीब अच्छी नर्सरियां हैं हमारे विभाग की, उद्यान विभाग की, वहां से जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करके और वहां की पौधशालाओं से गुणवत्ता युक्त अच्छे पौधे ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, पौधा खरीदत समय कौन बात है जवना के सावधानी से ध्यान पूर्वक देख के ही पौधा खरीदे ताकि पौधा मरे ना?
2: सबसे बड़ी चीज यही है कि हमको किसान भाइयों को पौधा हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी पौधशाला से नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकारी पौधशाला या भारत सरकार की सरकारी पौधशाला या कृषि विज्ञान केंद्र की कोई पौधशाला है उससे ही लेना चाहिए। अब उससे गारंटी ये रहेगी कि प्रजाति की गारंटी रहती है, मदर पौधे का सिलेक्शन वहां पर उसके फल, आकार, गुण, स्वाद सभी को देख करके किया जाता है, तभी उससे पौधे तैयार किए जाते हैं। एक तो ये गारंटी कर लें कि हम अच्छे स्रोत से लें, प्राइवेट हाथों में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। जो पंजीकृत अच्छी नर्सरियां हैं, निजी पौधशालाएं, वहां से ले सकते हैं, लेकिन वैरायटी प्रजाति की संतुष्टि के बाद अच्छी तरह से प्रमाणिकता हो जाए, किलो वाली नहीं, 5 से 7 किलो मिट्टी वाली पिंडी जो पौधा दिया जाता है हमारा तैयार करके बस्ती सेंटर से, वो पौधा 100% चलता है, उसमें कोई भी मरने की संभावना नहीं रहती है। फिर भी किसान भाइयों को चाहिए कि जब पौधा ले जाएं तो सावधानी पूर्वक ले जाएं, उसको पिंडी टूटने न पाए ऐसे कायदे से लेकर के रखें, और चूंकि दूरी से आप ले जाते हैं तो छाया में रख दें और उसमें पानी डाल दें। पौधा जाते समय वाहन में उसमें टक्कर आता है तो मिट्टी में हिलने डुलने की चांस रहता है, जब मिट्टी हिलती है तो पिंडी के अंदर हवा जाने की गुंजाइश रहती है, और जैसे ही हवा उसमें जाएगी जड़ों के पास में तो पौधा सूखने का डर रहता है, नंबर एक। नंबर दो, जब पौधा लगाते हैं उस समय भी ध्यान रखना चाहिए कि पिंडी टूटने न पाए, आराम से ब्लेड से काट करके उसको पन्नी को हटा दें और तब पौधे को लगाएं, तो पौधा मरेगा कतई नहीं।
1: पूर्वांचल में जितना भी आम का बागवानी है वो में खास तौर से आम का गुम्मा रोग या यह तरह से कुछ बीमारी है जो की पूरा बाग खराब कर देली, तो यह कुल प्रजातियन में का यह रोग से बचाव है या इसमें भी लगेला या कैसे एकर जानकारी करे के पड़ी?
2: कुछ प्रजातियां हैं जिनमें गुम्मा रोग शुरुआत में लगता है, जैसे आम्रपाली प्रजाति है जो पूर्वांचल में पहले लगाई गई है, तो शुरुआत में 5 से 7 साल तक इसमें दिक्कत रहती है, ऐसा दिखता है छोटा बहुत गुम्मा, तो उससे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जहां भी दिखता है उसको काट करके तुरंत हटा दें और वहां पर फेंके नहीं खेत में, कहीं ले जा करके जमीन में गाड़ दें या जला दें, और आगे चल करके 7 साल बाद 6 साल बाद उसमें गुम्मा रोग नहीं आएगा। लेकिन ये जो प्रजातियां हमने बताई रंगीन किस्में हैं या विदेशी प्रजातियां हैं, इसमें गुम्मा रोग का प्रकोप नहीं होता है, फिर भी अगर कहीं दिखता है तो उसका इलाज किया जा सकता है, उसकी रोकथाम आराम से कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये बताई कि चलत चलत आम का जो रंगीन विदेशी प्रजाति है ओकर एक बार और नाम बता दें।
2: जी, हमने बताई जो लखनऊ से दो प्रजातियां निकली हैं, वो एक प्रजाति है अंबिका और एक प्रजाति है अरुणिका। इसके अलावा दिल्ली से 5-6 वैरायटियां निकली हैं, पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा, पूसा अरुणिमा और पूसा प्रतिभा, पूसा पीताम्बर, ये मुख्य प्रजातियां हैं। विदेशी प्रजातियां हैं टामी अटकिन एक, और दूसरी सेंसेशन। एक और महत्वपूर्ण चीज, जब भी आम के पौधे किसान भाई लगाएं तो उसमें मिक्स करके कुछ प्रजातियां जो बॉम्बे ग्रीन हमारी प्रजाति है उसको जरूर 5 से 10% लगा लें, यानी कि 100 में 10 पौधे बॉम्बे ग्रीन के जरूर लगाएं बीच बीच में, क्योंकि इससे पॉलिनेशन अच्छा होता है, परागण बहुत अच्छा होता है, फलत अच्छी आती है, नंबर एक। नंबर दो, बाग को लगाने के लिए दक्षिणी पश्चिमी जो किनारा होता है उधर की तरफ घेर बार जरूर लगाएं, या ऐसे पौधे लगाएं जो लंबे होते हैं, जैसे लखनऊ सफेदा, उसके पेड़ बहुत लंबे होते हैं और उसका डंठल आम का बहुत मजबूत होता है, तो आंधी जो आती है उससे गिरते नहीं है, तो गर्म लू से बचाव के लिए दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर इस तरह की सुविधा जरूर किसान भाइयों को कर लेनी चाहिए।
0: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आम की विदेशी और रंगीन प्रजातियों की बागवानी से लाभ विषय पर बातचीत बातचीत कर रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से विनय कुमार। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6.40 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6.40 करोड़ वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड

0: भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
1: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
2: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार।

एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 303.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं। संपन्न होती है हमारी यह प्रसारण सभा। एफएम बैंड पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ सायं 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह हैं। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कह कर गई हैं पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूँ। संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफ़ी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ, बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही, बाद में ही सही। समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना, मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हो, और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, तुम खाना लगाओ। लो, मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं, और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज़ आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना

रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना? संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है? संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में? संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वह कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फ़ोन की घंटी बजी और वो फ़ोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फ़ोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया बाकी उन्हें जो करना है करें, मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने।

इस सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना, माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना, तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे, माँ हम में फ़र्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाज़ा, भावना ने उठकर दरवाज़ा खोला। अरे मम्मी जी, आप इतनी सुबह? हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज़ तुम चाय पिलाती हो, तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूँ तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ़ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है, तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज़्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाज़ा भी मैं ही खोलूँ, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाज़ा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी, बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी, वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी, आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए, लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना, अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ, आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स एवं 100.1 FM पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे को हैं आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: After a detailed assessment,
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, केम छो बदा अने आपणो सूरत मजा मां ने? तू शू लई आव्यो छो भाई? धन्यवाद दोस्त, सरस मजानू चित्र बनाई देते हैं। जरा SP जना लोको आप भाई कहीं भेंट आपवा मांगे छे।
1: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में। और आज हैं आप शिवलता के साथ। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। कोशिश और निरंतर अभ्यास से हम किसी भी काम में निपुण बन सकते हैं। जैसे बार बार रगड़ खाने से एक कोमल सी रस्सी एक कठोर पत्थर पर भी निशान बना सकती है, वैसे ही अगर हम निरंतर कोशिश करते रहें तो ज़रूर सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हर वर्ष 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोगों को प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूक करना है। हमारी पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाए रखने के लिए ये दिन एक महत्वपूर्ण वैश्विक अभियान के रूप में काम करता है। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं।

मानव अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुंध औद्योगीकरण और वनों की कटाई के कारण हमारा पर्यावरण तेजी से दूषित हो रहा है। इसी गंभीर संकट की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन के दौरान रखी गई थी। ये पर्यावरण पर दुनिया का पहला बड़ा सम्मेलन था। इसके बाद 5 जून सन 1974 को पहली बार आधिकारिक तौर पर पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम ओनली वन अर्थ थी। दोस्तों, आज हमारी पृथ्वी कई तरह के संकटों से जूझ रही है, जो हमारी लापरवाही का ही नतीजा है। कारखानों और वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं सांस लेना दुभर कर रहा है। प्लास्टिक कचरा मिट्टी और समुद्रों को बर्बाद कर रहा है, जिससे समुद्री जीवों को भी जीवन जीने में खतरा महसूस हो रहा है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और मौसम का चक्र पूरी तरह बिगड़ चुका है। नदियों का प्रदूषित होना और भूजल स्तर का लगातार नीचे जाना मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं तो हमें आज ही कदम उठाने होंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें वृक्ष लगाने होंगे। वृक्ष न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी कम करते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करें और कपड़े या जूट के थैलों को अपनाएं। पानी की हर एक बूंद कीमती है, इसलिए वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें। कोयले और पेट्रोल पर निर्भरता कम करके सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को हमें अपनाना चाहिए। दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकारों या सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सभी का परम कर्तव्य है। पृथ्वी हमें जीवन देती है और इसकी सुरक्षा में ही हमारा अस्तित्व छुपा है। आइए इस पर्यावरण दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे और अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे। धरती, हवा और पानी है जीवन की निशानी। धरती, हवा और पानी है जीवन की निशानी। इनकी रक्षा करना है हम सबकी जिम्मेदारी। दोस्तों, इसी के साथ ही हम एक रिले की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं और ये छात्र हैं, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
2: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
1: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
2: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
2: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी हम लोग आकर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
2: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
2: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
2: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
2: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
2: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है,
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
2: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
2: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
2: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
2: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
2: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
2: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह से यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
2: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
2: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का भी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका युववाणी कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे सोशल मीडिया का सदुपयोग के बारे में। दोस्तों, सोशल मीडिया का सदुपयोग आज के समय में सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि ये तकनीक एक दोधारी तलवार है जिसका सही इस्तेमाल हमें शिखर पर पहुंचा सकता है, वहीं गलत इस्तेमाल समय की बर्बादी का कारण भी बनता है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लोग अपना काफ़ी समय इन प्लेटफॉर्म्स पर बिताते हैं। सोशल मीडिया सूचनाओं के आदान प्रदान और लोगों से जुड़ने का एक बेहतरीन माध्यम है, लेकिन किसी भी तकनीक की तरह इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये हमारे विकास का एक शक्तिशाली साधन बन

दोस्तों, सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर और ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। शैक्षणिक चैनल्स के माध्यम से छात्र घर बैठे कठिन से कठिन विषय मुफ्त में सीख सकते हैं। देश विदेश की खबरों और सामान्य ज्ञान से खुद को अपडेट रख सकते हैं। कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कुकिंग या कोई नई भाषा सीखने के लिए भी सोशल मीडिया पर बेहतरीन ट्यूटोरियल्स उपलब्ध होते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र और पेशेवर लोग अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं, नई नौकरियों की जानकारी पा सकते हैं और बेहतरीन करियर के अवसर तलाश सकते हैं। इसी के साथ छोटे और बड़े व्यवसायी सोशल मीडिया के जरिए बहुत कम खर्च में अपने प्रोडक्ट्स को लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। आज वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन बिजनेस पूरी तरह सोशल मीडिया पर टिके हैं। किसी आपदा के समय फंड इकट्ठा करने से लेकर रक्तदान के लिए लोगों को खोजने या किसी सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, इसके साथ ही इसके दुरुपयोग के दुष्प्रभाव भी हैं। इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे और भी, पर उसके पहले चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: होती है उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
7: उससे तो सस्ता ही है।
0: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
8: दोस्तों, हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे सोशल मीडिया के सदुपयोग के बारे में। हम सब जानते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया का सदुपयोग नहीं करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इसके लिए जागरूकता बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करते रहें। दोस्तों, रील्स और शॉर्ट्स देखने की लत में घंटों बर्बाद हो जाते हैं, जिससे आपका कीमती वक्त बर्बाद हो सकता है। दूसरों की चकाचौंध भरी ज़िंदगी देखकर खुद से लोग दूसरों की ज़िंदगी की तुलना करने लगते हैं, जिससे डिप्रेशन और अवसाद का शिकार हो सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी भी फर्जी खबर को शेयर करने से समाज में नफरत और तनाव फैलता है। सोशल मीडिया को अपना गुलाम बनाने के बजाय खुद उसका गुलाम बनने से बचने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम कह सकते हैं सोशल मीडिया के सदुपयोग के कुछ नियम हैं, जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इन नियमों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि समय सीमा तय करें। दिन भर में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का एक निश्चित समय, जैसे एक या दो घंटा तय करें। सकारात्मक सामग्री चुनें, केवल उन पेजों या लोगों को फॉलो करें जो आपको प्रेरित करते हैं, कुछ नया सिखाते हैं या फिर आपका ज्ञान बढ़ाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, किसी भी पोस्ट या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी सत्यता की जांच ज़रूर करें, वरना जाने अनजाने में आप पता नहीं कब किसी गलत खबर को शेयर कर देंगे, जिसके परिणाम खराब हो सकते हैं। बाद में खुद को दोषी देने से अच्छा है कि पहले ही आप किसी पोस्ट या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी जाँच कर लें। रचनात्मक बने, क्रिएटर बने, सिर्फ कंज्यूमर नहीं। केवल दूसरों की वीडियोस देखने के बजाय अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। दोस्तों, विज्ञान और तकनीक ने हमें सोशल मीडिया के रूप में एक अद्भुत उपहार दिया है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे वरदान बनाते हैं या अभिशाप। सोशल मीडिया का सदुपयोग करके हम न केवल अपना ज्ञान और करियर चमका सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। डिजिटल दुनिया में जीने के साथ साथ वास्तविक दुनिया, परिवार और दोस्तों को भी समय देना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोशल मीडिया के चक्कर में अपने दोस्त, यार या परिवार को नेग्लेक्ट करें। दोस्तों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है हमारी प्रश्नोत्तरी का। आज का सवाल पूछने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे कल के पूछे गए सवाल का सही जवाब। दोस्तों, हमारा कल का सवाल था, लोकटक लेक यानी लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, जिसका सही जवाब है लोकटक लेक यानी लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे आज के सवाल पर। हमारा आज का सवाल है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।

आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
4: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पंचों जय हिंद। भैया देखा नारा लगल और बैठकी के शुरुआत भइल।
3: हाँ भैया,
2: आज के दिन भैया पूरी दुनिया में पर्यावरण दिवस के रूप में मनावल जा रहा बा।
3: हाँ भैया,
2: और आज भैया जगह जगह पे कार्यक्रम का आयोजन भइल। भैया हम सवेरे घूमे निकल आली, हम देखली एक जगह जौन बा दूगो गाड़ी लोग खड़ा कैले रहना।
3: हाँ हाँ।
2: और निःशुल्क पौधा का वितरण करत रहना। हम पूछले भैया आमो का पौधा चाहिए, कहल भैया बिल्कुल मिल जाये। तो जौन बा जितना लोग पहुँचत रहें सबके निःशुल्क पौधा देते रहें। हम पूछ रहे भैया काहे फ्री में पौधा बांटे ताटा।
3: हाँ हाँ।
2: तो कहला भैया आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण के लेके लोग जौन बा गंभीरता से सोचें, पेड़ पौधा लगावें।
3: हाँ हाँ।
2: यही वजह से जौन बा ये फ्री में हमन के दे रहल बानी।
3: भैया आप सही कहनी कि विश्व पर्यावरण दिवस पे जौन बा आदमी के जागरूक होए पड़ी कि वो पर्यावरण के बारे में सोचें, उसके संरक्षित करें। आदमी अंधाधुंध विकास के चलते जौन बा जौन प्रकृति प्रदत्त चीज रहना है, जैसे नदी हो गई, तालाब हो गई, जंगल हो गए, लोग के काटत चल गई, नष्ट करत चल गई, जौने के दिन देन ही भइल कि अपन पर्यावरण बहुत तरह से दूषित हो गई, चाहे वो जल प्रदूषण हो गए, वायु प्रदूषण हो गई।
2: भैया बिल्कुल सही कहला। आज के समय मने कहा था ना कि भैया बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा बा।
3: हाँ हाँ।
2: अभी कितना गर्मी पड़ी, बरसात में बरसात नहीं होता।
3: हाँ।
2: ठंडी जब पड़ेगा तो ठंडी नहीं होता, अगर पड़ता तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रहा बा।
3: हाँ हाँ।
2: तो ये जौन असंतुलन बा एकरे सज्जी के पीछे अपन पर्यावरण हुए।
3: हाँ।
2: अगर पर्यावरण दिवस के बात कर जाए तो पहली बार भैया 1973 में जौन बा पर्यावरण दिवस मनाओल गए रहा। 1972 में भैया संयुक्त राष्ट्र संघ यह दिन के जौन बा नामित कैले रहल कि जौन बा 5 जून के दिन जौन बा पर्यावरण दिवस के रूप में मनाओल जाए। तब से हर साल ई दिन मनाओल जाला।
3: भैया देखा ई चर्चा हमन के अपने कार्यक्रम में कई जाता, तो अपने पंच भाई लोगन के भी चाही कि अपने जीवन में पर्यावरण के बचावे खातिर इनके संरक्षित करे के तमाम तरह के उपाय जौन बा अपनावे, जौन कि जौन हमन के जौन चीज़ आज बा हो सकल कल ई चीज़ नहीं मिले तो ये आगे भी वो चीज़ चल के मिले, पर्यावरण संरक्षित रहे ओकरे खातिर उपाय करे के पड़े।
2: भैया एक युग जमाना वो रहा जब अपने गाँव ही में बढ़न बढ़न बगिया लौके।
3: हाँ हाँ।
2: इतनी घनी बगिया रहे कि मनई जब दिन में से जाए तो दिनों में मुआ चिड़े की आवाज़ सुनाई पड़े।
3: हाँ हाँ।
2: जे कमजोर हृदय वाला मनई रहा, कमजोर हाँ दिल का मनई रहा।
3: हाँ हाँ।
2: वो कहा भैया फलाने बगीवा में दिनों में मुआ चिड़े बोलत थी।
3: हाँ
2: हम अकेले ना जाए।
3: हाँ हाँ।
2: और अब ये स्थिति हो गई बा कि जितना बाग बगीचा रहें कट ही गए।
3: हाँ।
2: अब मनई के भैया छाए खरीदिन पेड़ जौन बा खोजे के पड़ रहा बा। सड़क के किनारे भैया जाइबा, सड़क चौड़ा चौड़ा तो बन ही गई।
3: हाँ,
2: लेकिन जितना पेड़ पौधा रहना कट गए,
3: सब कट गए। पहले ही रहल कि आदमी जात रहना तब पेड़ के छाव रहे, कहीं भी रुकी जात रहना है और छाया लगत रहल हवे। और जैसे आप कहनी गर्मी बढ़त चल जाता, गाँव में पहले गर्मी में जौन बा बगीचा में दिन भर मनई मई बैठल रहें और उनके गर्मी के एहसास ना।
2: भैया पेड़ पौधा के जौन महत्व बा ओकर उल्लेख अपने जौन वेद पुराण बा उमहन भी बा, कहल जाला ना कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना।
3: हाँ।
2: तो एके अपन पंच भाई माने एकरे अनुरूप काम करें। और जैसे आज विश्व पर्यावरण दिवस है।
3: हाँ।
2: हर आदमी अगर एक पेड़ लगावे तो कितना भैया पेड़ पौधा लग जाए। अब पेड़ पौधा लगौले के साथे साथे ओकर संरक्षण भी जरूरी बा।
3: अब भैया संरक्षण और दूसरे के प्रेरित भी करें, अगर आप कहीं जात हैं कि ओके शादी ब्याह पड़ा था, कोनो समारोह पड़ा था, तो उनके उपहार दिले से बढ़िया बा एठो आप पेड़ दें उनके।
2: हाँ भैया,
3: ताकि वो पेड़ लगावे और वो जौन बा जागरूक होके पर्यावरण के बचौले के प्रति।
2: भैया देखा एक पेड़ अगर कहूँ लगा दिलस, मान लो आम का पेड़ लगौलस तो फल भी मिली, लकड़ी भी मिली, छाया भी मिली।
3: हाँ।
2: हर तरह से जौन बा उसे फायदा, पेड़ पौधा हमन के कुछ लेला नहीं। ये समय देखा जौन तमाम दिक्कत हो रहा बा, पेड़ पौधा कम हो गए बा।
3: हाँ हाँ।
2: तो जौन हमन के सांस लिहल जाला ऑक्सीजन।
3: हाँ।
2: हमन जौन पेड़ पौधा छोड़ल हैं ऑक्सीजन, ओकर हमन के सांस लिहल जाला। और हमन के जौन छोड़ल जाला कार्बन डाइऑक्साइड, ओकर पेड़ पौधा उपयोग कर लेल हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भैया अगर पेड़ पौधा लगावल जाए तो जौन अपन पर्यावरण बा वो भैया संतुलित रही। और यह दिन का यह उद्देश्य हुए।
3: हाँ।
2: कि पर्यावरण के लेके जौन खतरा बा ओकरे बारे में लोग जागरूक होखें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में गंभीरता से सोचें। यही की वजह से भैया ये दिन मनावल जाला। आज के दिन भैया हम चाहत आटी कि पंच भाई एगो जानकारी भी सुने, पर्यावरण प्रदूषण और हम यह विषय पे जानकारी दे रहा हूँ भगवान दत्त तिवारी। तो यह जानकारी को पंच भाई सुने और लाभ उठावें।
4: स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की उत्पत्ति होती है, परंतु यदि वातावरण ही प्रदूषित होगा तो न तो स्वस्थ शरीर होगा और न ही स्वस्थ मस्तिष्क। वैदिक काल से ही प्रकृति और मानव के बीच जीवन तंत्र का बड़ा ही अटूट संबंध रहा है।

परंतु आज विडंबना यह है कि हम अपने प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं और लोभान्वित होकर हिंसक और अधर्मी तरीके से प्रकृति का शोषण करने में लगे हैं। अपने स्वार्थ में अंधे होकर हम यह भी भूलते जा रहे हैं कि आने वाले कल के लिए यह सब कितना भयंकर रूप धारण करेगा। प्रकृति ने जब हमें इतना सुखदायी और सुंदर जीवन प्रदान किया है तो हमारा भी यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि हम इसका यथोचित सम्मान करें और प्राकृतिक नियमों की अवहेलना न करें। इसी में हमारा उज्जवल भविष्य निहित और सुरक्षित है। पर्यावरण अर्थात प्राकृतिक परिवेश। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, इसलिए पर्यावरण का अर्थ हुआ पृथ्वी के चारों ओर का आवरण। हम, आप, अन्य प्राणी और पौधे जिस जैविक और भौतिक वातावरण में रहते हैं वही है पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत वह सभी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। यही पर्यावरण संतुलन जब बिगड़ने लगता है अथवा इसके अल्पांश में जब कमी आती है तो परिणाम बड़े भयंकर होते हैं और यही प्रदूषण है। पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक भौतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत मिट्टी, जल और वायु आते हैं, तथा दूसरा जैविक पर्यावरण जिसके अंतर्गत जीव जंतु और पौधे आते हैं। पर्यावरण के ये दोनों घटक एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और इसीलिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रदूषण आज विश्व की सर्वाधिक चर्चित एवं भयंकर समस्या है। वर्तमान में इसने इतना विकराल एवं भयंकर रूप धारण कर लिया है कि पूरी मानव जाति का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। वास्तव में आज हर महानगर, नगर, कस्बे, यहाँ तक कि गांव भी प्रदूषण की समस्या से ग्रसित हैं। यही कारण है कि आए दिन यह सुनने को मिलता है कि अमुक नदी में मछलियों का सामूहिक विनाश हो गया है, अमुक नदी का पानी पीने से नगर या शहर या गांव के निवासी भारी संख्या में रोग ग्रसित हो गए हैं, अमुक कारखाने में हुए गैस रिसाव के कारण वायु प्रदूषण से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। आज विश्व की अधिकतर नदियां तथा जल के अन्य स्रोत जैसे झीलें, तालाब, कुएं आदि प्रदूषित हो चुके हैं, जिसका मुख्य कारण इन जलाशयों के कारण बसे बने घनी आबादी वाले महानगर, नगर और शहर तथा इन महानगरों, नगरों और शहरों में औद्योगिकरण का होता निरंतर विकास। औद्योगिकरण तथा अंधाधुंध विकास की दौड़ ने पर्यावरण को आज विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। बदहाली का शिकार पर्यावरण आज हम सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत की पर्यावरणीय समस्याएं तो हैं ही, प्रदूषक गैसों का प्रलयकारी हमला पर्यावरण पर और भी कई तरीके से हो रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप हमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं का जितना विकास किया है, जितना अधिक विकास किया है, प्रदूषण की समस्या उतनी ही उत्तरोत्तर जटिल होती गई है। अनगिनत कल कारखाने, मोटर वाहनों और ताप बिजली घरों से उत्सर्जित धुएं से, कीटनाशक दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग से, कूड़े करकट व दोषपूर्ण मलमूत्र के जमाव से, वृक्षों की अनवरत कटाई से, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और परमाणु बिजली घरों द्वारा उत्सर्जित फैली रेडियो सक्रियता से हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व की 80% से अधिक शहरी जनता ऐसे वातावरण में सांस ले रही है जिसमें विषैली गैसें मौजूद हैं। आइए प्रदूषण पे चर्चा करते हैं। पहला है जल प्रदूषण। जल एक ऐसा महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और हवा के बाद वस्तुतः जीवन के लिए यह एक आवश्यक तत्व है। वस्तुतः सभी प्रकार के जीवन के लिए जल नितांत आवश्यक है। जल मात्र पीने के लिए ही नहीं वरन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन बनाना, सफाई करने, अन्य घरेलू कार्य, मत्स्य पालन, सिंचाई करने, बिजली बनाने, दमकल कार्रवाई इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक है। परंतु आज विश्व की अधिकांश नदियां तथा जल के अन्य स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं। आज जल के स्रोत जैसे नदियों में मलमूत्र, शहर की गंदगी, फैक्ट्रियों के कचरे एवं विषैले पदार्थ, मरे हुए

जानवरों की प्रवाह से, लाशों की प्रवाह से, धार्मिक पर्व पर मूर्तियों के विसर्जन से, दीपकों से, फलों एवं फूलों के प्रवाह से तथा कई अन्य गंदे

मंडल में ऑक्सीजन की मात्रा वनस्पतियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाई जाती है, लेकिन जब स्वस्थ वायु के अवयवों में विषाक्त गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड प्रवेश कर जाती हैं, तो वायुमंडल का नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रवेश कर जाती हैं, तो वायुमंडल का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और हमें प्रदूषित हवा लेनी पड़ती है, जो शरीर के अनेक अंगों को प्रभावित करते हुए बहुत सारे रोगों का कारण बनती है। इस समय हम एक रासायनिक पदार्थ का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं और यह रासायनिक पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग हम रेफ्रिजरेटर, एसी, एरोसॉल व फोम आदि में करते हैं। इनसे जो निकलने वाली गैसें होती हैं, ये पहले वायुमंडल में ऊपर जाती हैं और ओजोन परत का क्षरण करती हैं। ओजोन परत हम सभी के लिए कितना लाभदायक है ये हम सभी जानते हैं। सूर्य से निकली किरणों में परावैगनी किरणें होती हैं जो सूर्य से निकलकर पृथ्वी की ओर आती हैं। पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर ऊपर स्थित ओजोन परत इन परावैगनी किरणों को अवशोषित करता है और पृथ्वी पर आने से रोकता है। यदि ओजोन परत का क्षरण होता रहा तो निश्चित रूप से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न तो होंगे ही, या यूं कहें कि मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तापक्रम बढ़ने से संपूर्ण विश्व की जलवायु पर असर पड़ेगा। एक ओर जहां वर्षा की स्थिति में अंतर आएगा तो दूसरी ओर पहाड़ों तथा ध्रुवों पर स्थित ग्लेशियर जल्दी जल्दी पिघलेंगे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां फसल होती है बंद हो जाएगी, फसल होना बनना, हरे भरे क्षेत्र मरुस्थल में बदल जाएंगे, समुद्र के किनारे स्थित शहर डूब जाएंगे। जहां तक ध्वनि प्रदूषण का सवाल है, आप ये कह सकते हैं कि इंसान के भाग्य में ध्वनि एक वरदान बनकर आई, लेकिन आज इंसान अपनी हरकतों से वैश्य अभिशाप में बदलता जा रहा है। आज तक पर्यावरण के अनेक शत्रु पैदा हो चुके हैं, तब सूर जैसे महाशत्रु को जगाना हमारे लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। विभिन्न प्रकार के शोर मानव जीवन के लिए मानसिक तनाव एवं अनेक बीमारियों के स्रोत बन गए हैं। शोर का प्रदूषण सीधे कानों पर वार करता है। अंत में होता यह है कि या तो शोर के वातावरण से आप अपने आप को बचाएं, या फिर शिकार होते हुए बहरे होने के लिए तैयार रहें। अत्यधिक शोर से श्रवण तंत्र का गड़बड़ा जाना, सिर दर्द, स्मृति लोप, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, चक्कर आना, त्वचा रोग, नाड़ी की गति में परिवर्तन आदि समस्याएं पैदा होती हैं। जहां तक कचरे के प्रदूषण का सवाल है, तो कचरे के प्रदूषण ने एक नई समस्या को जन्म दिया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में एक नया आयाम आ गया है। मानव गतिविधियों से उत्पन्न कचरा स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। घरेलू कचरों में रद्दी कागज, पॉलीथीन, प्लास्टिक, रबर, लोहे का सामान, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से बना बचा कुचा खाना, फल, सब्जियों के छिलके आदि मौजूद होते हैं, जबकि औद्योगिक कचरे में मुख्यतः धातु और रसायन होते। इन कचरों के साथ आई नमी तथा गंदा पानी रिस कर भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। बिखरे कचरों के सड़ने से बदबू आती है तथा उस पर मक्खी, मच्छर, काकरोच आदि संक्रामक जीवाणु भी पनपते हैं, जो तमाम रोगों का कारण बनते हैं। कचरे के जमे ढेर से मीथेन गैस निकलती है, जो प्रदूषणकारी होने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। यह ग्लोबल वार्मिंग बहाने में भी सहायक होती है। जहां तक समाधान के रास्ते का सवाल है, तो निश्चित रूप से हमें वनों के अवैध कटान पर रोक लगानी चाहिए। वृक्षों को सतत लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पॉलीथीन के प्रयोग को बंद करने के लिए व्यापक अभियान चलाना चाहिए। सामाजिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के मीडिया माध्यमों जैसे समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान कर प्रदूषण को कम करने के उपाय से जनमानस को परिचित कराया जाना चाहिए। अधिक से अधिक संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण का प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए। काला जहरीला
उगलते जो हमारे कारखाने हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कारखानों को शहरी क्षेत्र के बाहर स्थापित करना चाहिए। जहां तक अत्यधिक शोर मचाने वाली मशीनें हैं उनमें निश्चित रूप से ध्वनि अवशोषक यंत्र लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए।

0: शहरों में जो सीवेज लाइन एवं फैक्ट्रियों के जो प्रदूषित जल हैं उनको नदियों में डालना एक तरह से अपराध घोषित करना चाहिए। नदियों में मरे हुए जानवरों, मल मूत्र तथा मुर्दों को फेंकने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वाहनों की गति सीमा को निर्धारित करना चाहिए। और अंत में हम यही कह सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। प्रदूषण एक तरह से भयंकर समस्या रूप लेती जा रही है। मानव की जीवन शैली अलग है, कानून अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा और जागरूकता ही ऐसे दो उपाय हैं जिससे हम पर्यावरण और प्रदूषण को कम कर सकते हैं।
1: हाँ भैया, बहुत निम्बन जानकारी दी है भगवान दत्त तिवारी, पर्यावरण प्रदूषण और हम विषय पे।
2: और भैया देखा जो जानकारी दे ले, हम समझे पंच भाई ध्यान से सुन ले हुई है और ऊपर अमल भी करी है। और भैया पेड़ पौधा लगौला के कोनो समय नहीं होला, घरे के अगवारे पिछवारे कहीं भी खाली जगह बा तो मौका देख के समय देख के वहाँ पेड़ पौधा लगा दें। हाँ, अलग बात बा भैया, घरे के किनारे अगर लगाओ ताटा तो यह बात का ध्यान रखें कि बहुत बढ़हन पेड़ पौधा मतलब ना लगाओ, ऐसा पेड़ पौधा ना लगावा जौन बहुत बड़ा होके कि आगे चल के दिक्कत पैदा करे। लेकिन जौन अगल बगल जगह खाली बा ओकर उपयोग करें, पेड़ लगा दें, इससे पर्यावरण जौन बा शुद्ध होई और साथे साथे ओकर आगे चल के उपयोग भी कर सकल। भाई बतकही हमन के आगे भी होई, लेकिन पंच भाई सुने एगो गीत गौने फिर हमन के बतकही कैल जाए।

0: भैया देखा, अजय कुमार यादव और उनका संगतिया लोग गीत गौना ही सुनाओत रहें।
1: हाँ भैया,
0: उम्मीद बा कि अपन पंच भाई लोग के पुरहर मन मनसाइन भइल होई।
1: हाँ,
0: यही के साथे अपने चलने के जुन भइल, चलल जाए
1: पंचो
0: पंचों, जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का एक गोरखपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे को हैं, कुछ ही देर में आप हमारे केंद्र से क्रमशः भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार सुनेंगे।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस के मौका पर आज लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधा लगा के प्रदेशव्यापी एक पेड़ माँ के नाम महाभियान का शुभारंभ कैने। मुख्यमंत्री ओइजा महर्षि चरक औषधि वन के स्थापना कार्यक्रम में शामिल भइले। ए मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि धरती माता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करत एक पेड़ माँ के नाम महाभियान के सफल बनावे बदे हर मनई अपने माता के नाव पर एगो पेड़ जरूर लगावे।
4: आज हम 5 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को प्रदेश भर में लगा रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान के साथ, और यह अभियान आगे बढ़ेगा वन महोत्सव के अवसर पर। जब थोड़ा बरसात हो जाएगी तो जुलाई मास में अगले महीने ही एक दिन में बड़ा अभियान चलेगा जिसमें 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम, महाअभियान का कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम प्रदेश का हर नागरिक लगाएगा, हर व्यक्ति के नाम पर लगेगा जो अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएगा। और प्रकृति इस धरती माता के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसके माध्यम से करेगा।
3: पृथ्वी पर जीव के जिंदगी का उपयोगिता बनावे रखले या संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ावे बदे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज विश्व पर्यावरण दिवस मनावल जा रहा हो। ए मौका पर आज पूरा प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगावल गईल। एगो रिपोर्ट।
5: महाराजगंज में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एक अन्य कार्यक्रम में महाराजगंज जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने भी पौधारोपण किया। संत कबीर नगर के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण किया। कौशाम्बी और रायबरेली समेत कई जिलों में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के बलिया में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल के भारत के सौवा रामसर स्थल घोषित कैल गैले पर खुशी जतौले हमें। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहले कि देश को प्राकृतिक परिवेश आ खास तौर से आद्र भूमि के रक्षा के प्रति भारत को अटूट प्रतिबद्धता एहमे झलकेला। वाराणसी में काल से शुरू भइल 2 दिन के ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह का बैठकी आज सांस्कृतिक सहयोग का कई गो प्राथमिकता वाले क्षेत्रन पर विचार विमर्श के साथे पूरा हो गईल। संस्कृत मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई 2 दिन के बैठकी के बारे में जानकारी दिहलेन।
6: कल और आज 2 दिन के जो हमारी प्रोसीडिंग्स है उसमें जो हमारा थीम है ब्रिक्स का इंडिया 2026 का, विच इज़ बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, तो इन्हीं 5 जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर चर्चा हो रही है।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी PSC, SDRF आ उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण, अवस्थापना विकास आ भावी कार्ययोजन क पुरहर समीक्षा कैने। प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट।
7: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि PAC, SDRF और UPSSF को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाए और सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाया जाए। श्री योगी ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से PAC की महिला बटालियनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर स्थित महिला PAC बटालियन परिसरों में क्रमशः वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना उदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
3: गोरखपुर के साथ ही प्रदेश के कुछ और जिलों में आज दिन में भीषण गर्मी आ उमस के बीचे अचक्के आसमान में बादल छा गईल आ कहीं कहीं हल्लुक से लेके मध्यम बरखा भइल। मौसम विभाग राज्य में बिहनहू कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़े क संभावना जतौले हो। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी आ पश्चिमी जिलन में 7 जून ले मौसम शुष्क रही। समाचार पूरा भइल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी एक पेड़ माँ के नाम महाभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री वहां पर महर्षि चरक औषधि वन की स्थापना कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती माता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक पेड़ माँ के नाम महाभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने माँ के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाए।
4: आज हम 5 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को प्रदेश भर में लगा रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान के साथ, और यह अभियान आगे बढ़ेगा वन महोत्सव के अवसर पर। जब थोड़ा बरसात हो जाएगी तो जुलाई मास में अगले महीने ही एक दिन में बड़ा अभियान चलेगा जिसमें 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम, महाअभियान का कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम प्रदेश का हर नागरिक लगाएगा, हर व्यक्ति के नाम पर लगेगा जो अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएगा और प्रकृति इस धरती माता के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसके माध्यम से करेगा।
3: पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज पूरे प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। एक रिपोर्ट।
5: महाराजगंज में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एक अन्य कार्यक्रम में महाराजगंज जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने भी पौधारोपण किया। संत कबीर नगर के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण किया। कौशाम्बी और रायबरेली समेत कई जिलों में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बलिया स्थित जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहा ताल को भारत का सौवां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्रभूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। श्री मोदी के पोस्ट को साझा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय है। वाराणसी में कल से शुरू हुई 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आज सांस्कृतिक सहयोग के विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श के साथ संपन्न हो गई। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने 2 दिवसीय बैठक के बारे में जानकारी दी।
6: कल और आज दो दिन के जो हमारी प्रोसीडिंग्स है उसमें जो हमारा थीम है ब्रिक्स का इंडिया 2026 का विच इज़ बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, तो इन्हीं पांच जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर चर्चा हो रही है।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी पीएसी एसडीआरएफ और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण, अवस्थापना विकास एवं भावी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
7: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीएसी एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाए और सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाया जाए। श्री योगी ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीएसी की महिला बटालियनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर स्थित महिला पीएसी बटालियन परिसरों में क्रमशः वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना उदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
3: गोरखपुर सहित प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में आज दिन में भीषण गर्मी और उमस के बीच अचानक आसमान में बादल छा गए और कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने राज्य में कल भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में 7 जून से मौसम शुष्क रहेगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
5: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
5: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: पंचो जय जवान जय किसान।
7: भैया देखा हमन के कोनो भी काम कर जाला खेती बाड़ी में,
6: हाँ
7: तो यह मनसा रहला कि जौन भी कुछ कैल जाता उसे भैया तनी जौन बा हट के कुछ आमदनी होके 10 पैसा अधिक आमदनी होके कोनो भी फसल लगावल जाला,
6: हाँ
7: तो जौन बा ओकरे पीछे शुरू से लेके आखिर तक लगल रहे के पड़ेला।
6: हाँ भैया,
7: और जौन अपन विभाग बा कृषि रक्षा विभाग,
6: हाँ
7: हाँ, जौन बा यह दिशा में भैया गंभीर बा कि जोन योजना बा अपन किसान भाई लोगन तक पहुंचावल जाए, लेकिन योजना का जानकारी किसान भाई लोगन का नहीं रहला, यह वजह से लोग जानकारी नहीं ले पावला। तो आज यही विषय पर किसान भाई जानकारी सुने कि कृषि रक्षा विभाग के कौन कौन योजना बा, यह बारे में जानकारी दे रहा हूँ डॉक्टर RD वर्मा।
8: गोरखपुर जनपद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर RD वर्मा जी से, वर्मा जी आपके विभाग के तरफ से कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं इसके बारे में बताएं।
9: जी नमस्कार। कृषि रक्षा चूँकि कृषि विभाग का ही एक उप संभाग की तरह होता है, और कृषि रक्षा का मुख्य जिम्मेदारी ये है कि जो किसान भाई फसल लगाते हैं पूरे साल भर में, रबी हो, खरीफ हो, जायद हो, तो उसमें कोई बीमारी या कोई कीड़े न लगें, उसकी पूरी जिम्मेदारी कृषि रक्षा अनुभाग पर होती है। और कृषि रक्षा अनुभाग में कई तरह की छोटी छोटी योजनाएं संचालित हैं जिसको मैं इस तरह से बता रहा हूं। जैसे अगर कोई किसान भाई बीज शोधन से संबंधित कोई अगर कृषि रक्षा रसायन का उपयोग करते हैं, चूँकि किसान भाई जानते हैं कि बीज शोधन बहुत ज़रूरी होता है, कई बीमारियों का जो है वो निराकरण करता है, और एक जो है जैसे बच्चों में टीका होता है उसी तरह टीके की तरह काम करता है, कोई बीमारी जो है फसल में नहीं लगती है। तो बीज शोधक अगर कोई कृषि रक्षा रसायन आप ले रहे हैं तो उस पर 75% का अनुदान जो है सरकार की तरफ से कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड, चूँकि किसान भाई ये जानते हैं कि बायो पेस्टिसाइड जो है किसी प्रकार का कोई केमिकल या कोई रसायन नहीं होता है, और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है क्योंकि जो है ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती सरकार जो है कराना चाह रही है ताकि जो है शुद्ध अन्न मिले और लोग स्वस्थ रहें। तो इस पर जो है बायो पेस्टिसाइड में जैसे ट्राइकोडर्मा है, बेबरिया वेसियाना है, नीम आयल है, तो इन सबों पर 75% का अनुदान जो है DBT के माध्यम से कृषि विभाग दे रहा है। इसके अलावा जितने भी कृषि रक्षा रसायन है, और चाहे वो खरपतवार नाशक हो, कीटनाशक हो, फफूंद नाशक हो, अन्न भंडारण के लिए जो है वो हो एल्युमिनियम फास्फाइड हो, चूहा नियंत्रण के लिए जिंक फास्फाइड हो, इस पर 50% का अनुदान किसान भाइयों को मिलता है। चूँकि जो भी दवाएं मैं बताया हूँ वो सारी दवाएं सभी राजकीय कृषि रक्षा इकाइयों पर उपलब्ध हैं और वह अनुदान पर वितरित किया जा रहा है, तो ऐसे में किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं।
8: डॉक्टर साहब, ये योजना जो आपने बताई कृषि रक्षा रसायनों पर छूट की, ये सभी किसानों के लिए है या कुछ सीमित किसानों के लिए?
9: जी, ये भूमि शोधन में और बीज शोधन में और बायो पेस्टिसाइड में जितने भी रसायन उपलब्ध हैं वह सभी किसानों के लिए मान्य है, चाहे वो लघु हो, चाहे सीमांत हो, चाहे बड़े किसान हो। लेकिन अगर कृषि रक्षा रसायन हम 50% की बात करें, जैसे खरपतवार नाशक है, फफूंद नाशक है, कीटनाशक है, तो ये लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए हमारे ये उपलब्ध होते हैं। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ जैसे कृषि रक्षा यंत्र,

0: की, तो कृषि रसायंत्र में चूँकि किसान भाई जानते हैं कि जैसे मानव चालित एक हाथ से चलने वाला एक होता है, एक बैटरी से चलने वाला होता है और एक पेट्रोल से चलने वाला होता है, तो हाथ से चलने वाले कृषि रसायंत्र पे स्प्रेयर मशीन जो होता है उस पर अधिकतम 1500 रुपया या जो भी उसका लागत मूल्य है उसका 50%, और पेट्रोल या बैटरी से चलने वाले पर अधिकतम 3000 रुपया या फिर लागत मूल्य का 50% अनुदान DBT के माध्यम से दिया जाता है। और इसमें किसान भाई खुले मार्केट से जहां से भी उनकी इच्छा हो अपना वो कृषि रक्षा यंत्र खरीदते हैं, और बिल विभाग में हमारे राज्य की कृषि रक्षा इकाई पे जो कर्मचारी हैं उनको जमा करते हैं, फिर सत्यापन के बाद जो है DBT के माध्यम से उनको उनका अनुदान उपलब्ध करा दी जाती है। इसके अलावा अन्न भंडारण के लिए बखारी की हम बात करें तो बखारी पर जो है 5 क्विंटल की बखारी पर 2000 रुपये का अनुदान है, या फिर अगर जो लागत मूल्य है उसका 50% अनुदान है। और किसान भाई बखारी खुले मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पोर्टल से ही टोकन जनरेट होता है वो निःशुल्क होता है। अगर पोर्टल से किसान भाई टोकन जनरेट कर लेते हैं और जो निःशुल्क होता है उसके बाद से खुले मार्केट से कहीं से बखारी खरीदते हैं तो उस पर 2000 रुपये का 5 क्विंटल पे हम लोग अनुदान DBT के माध्यम से प्रेषित कर देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जो कृषि रक्षा रसायनों का उपयोग हो रहा है उनका कहीं ना कहीं कृषि उत्पादों पर प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में हमारा जोर जो है इस तरफ है कि जो वैकल्पिक विधियां हैं, नई नई जो तकनीक है जिनमें जो है रसायनों का उपयोग नहीं होता है उनके माध्यम से हम कृषि रक्षा के उपाय करें, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत बढ़िया प्रश्न ये है। चूंकि देखिए कोई भी कृषि रक्षा रसायन हो तो हम कहने के लिए तो दवा कहते हैं लेकिन वास्तव में वो जहर होता है। जाने अनजाने में कोई भी अगर 5 ml या 10 ml एक ढक्कन कोई पी लेता है तो उस इंसान की मौत हो जाती है। तो निश्चित रूप से किसान भाई हमारे इतने अधिक जो है कृषि रक्षा रसायनों का उपयोग करते हैं मिट्टी में फसल पे, तो कहीं न कहीं उसका जो है पर्यावरण या जलीय जीव जंतुओं पे या मानव पे या अन्य जो है पेड़ पौधों पर भी बहुत अधिक इसका कुप्रभाव पड़ता है। चूंकि बहुत ऐसे कृषि रक्षा रसायन है जिसका छिड़काव आज किसान भाई कर देते हैं, दूसरे तीसरे दिन उस सब्जी का प्रयोग खाने में लोग करते हैं तो वो हमारे शरीर में चला जाता है और शरीर में जाकर के तमाम तरह की भयंकर बीमारियां उत्पन्न करता है जिससे हमारा तमाम जो है पैसा खर्च होता है। तो इससे बचने के लिए सरकार जो है एक बहुत अच्छा विकल्प उसका जो है की है। चूंकि पहले मैं बता चुका हूं कि बायोपेस्टिसाइड, तो बायोपेस्टिसाइड के अलावा जो है कुछ ऐसे IPM का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो इसके तहत जो है सरकार ये चाह रही है कि हमारे किसान भाई कुछ ऐसी खेती करें ताकि इन जो रासायनिक खाद है चाहे रासायनिक कीटनाशक है जो जहर है इससे मुक्ति मिल सके और शुद्ध जो है अन्न उत्पादन हो ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ हों, हमारे किसान भाई के परिवार स्वस्थ हों, अन्य लोग भी स्वस्थ हों, ताकि एक जो है स्वस्थ एक समाज बन सके। इसके लिए कृषि विभाग इस बार जो है IPM से संबंधित कई तरह के छोटे छोटे यंत्र जो है किसानों में वितरण करने के लिए उपलब्ध कराया है जो सभी राज्य की कृषि रक्षा इकाइयों पर उपलब्ध चला गया है किसान भाइयों के वितरण के लिए, और इस पर 75% का अनुदान भी है। जैसे मैं उसकी चर्चा करूं तो सोलर लाइट ट्रैप एक आया हुआ है, और सोलर लाइट ट्रैप एक इस तरह का है चूँकि सोलर पैनल एक ऊपर लगा हुआ है तो किसान भाइयों को इसको चलाने के लिए किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो धूप में रख दें 4-5 घंटा वो पूरा बढ़िया से चार्ज हो जाता है, और फिर जो है उसमें लाइट लगी हुई है, बटन आप ऑन करेंगे, शाम के टाइम में जो भी आप सब्जी की खेती कर रहे हैं या कोई अन्य फसल की खेती कर रहे हैं जिसमें कीड़े लग रहे हैं तो आप उसको ले जा करके आप 2 घंटा शाम के टाइम में रख दीजिए लाइट जला करके, नीचे एक प्लेट लगा होता है पूरा उसी में सेटअप होता है, पानी भर दीजिए और कीड़े जो है प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं वे आएंगे और उसी से टकरा करके नीचे पानी में गिरेंगे और वहीं आपका कीट कंट्रोल हो जाएगा, आपका फसल या सब्जी हो सुरक्षित होगा, किसी प्रकार की आपको केमिकल की जरूरत नहीं है। एक बार आप जब ले लेते हैं आप वर्षों इसका उपयोग करते हैं, लागत बहुत कम है, 75% अनुदान पे है, तो किसान भाई इसका उपयोग करें। इसके अलावा फेरोमेन ट्रैप भी कृषि विभाग में आया हुआ है। फेरोमेन ट्रैप क्या है कि एक जो है एक छोटा सा यंत्र है जिसको आप फसल के ऊपर जो है 1 फीट ऊंचाई पर कोई बांस की डंडी लगा करके आप उस पे टांग सकते हैं और उसमें अलग अलग ल्योर जिसको जो है हम नर हार्मोन बोलते हैं वो लगा दिया जाता है, तो उसका गंध जो है उसके चारों तरफ से फैलता है सब्जी या फसल के खेते में, तो क्या होता है कि जो मादा कीट होते हैं वो आकर्षित होकर के उस फेरोमोन ट्रैप तक आते हैं, और जैसे फेरोमोन ट्रैप पर टकराते हैं नीचे जाली लगी होती है उसी जाली में गिरते हुए चले जाते हैं और सब इकट्ठा आपके पास आ जाते हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं, उनको आप नष्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी रसायन बिना किसी जहर का उपयोग करते हुए आप इसका इस्तेमाल करके आप जो है कीट का नियंत्रण कर सकते हैं, अपने सब्जियों को अपने फलों को आप जो है उत्पादन बढ़ा सकते हैं और बीमारियों से बचा सकते हैं।
1: ये आईपीएम में और भी कोई यंत्र है?
0: इसके अलावा एक येलो स्टिकी ट्रैप जो कृषि विभाग में आया हुआ है वो भी सभी कृषि रक्षा इकाइयों पर मौजूद है। येलो स्टिकी ट्रैप जो है एक फीट लंबा और एक फीट चौड़े का एक जो है एक दफ्ती होता है, उस दफ्ती पे पीले रंग का एक जो है पेपर चिपका दिया जाता है और उस पे एक गोद एक चिपकने वाला एक ग्लू जिसको बोलते हैं आप साधारण भाषा में गोद समझिए वो लगा होता है। आप उसको फसल के ऊपर एक फीट या डेढ़ फीट ऊपर जो है थोड़ा टांग देते हैं कोई डंडी लगा करके, तो जो पीला कलर होता है वो क्या होता है कि कीड़ों के प्रति एक आकर्षण का कलर होता है, वो रंग होता है, तो कीड़े जो है वहाँ पे पहुँचते हैं और जैसे उस पर बैठते हैं तो चूंकि पहले से गोद उसमें लगा होता है तो उसमें चिपक जाता है और फिर जो है बिना आपको किसी केमिकल बिना किसी रसायन का उपयोग करके आप कीड़ों को आप जो है नियंत्रित कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उनको अपने हिसाब से उनका नियंत्रित कर देते हैं, तो आपका फसल हो या सब्जी हो कोई भी चीज़ हो तो आपका नियंत्रित हो जाता है, कोई बीमारी और कीड़े उस पर प्रकोप नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर आप बात किया जाए तो आईपीएम कृषि विभाग जो है एक 14 सप्ताह का एक जो है ट्रेनिंग है ये भी चला रहा है और इस बार सरकार की तरफ से ये व्यवस्था किया गया है कि हर विकास खंड में एक रबी में और एक खरीफ में आईपीएम 14 सप्ताह का प्रशिक्षण किया जाएगा, जिसमें हर विकास खंड से एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा जिसमें 30 किसान होंगे, उन 30 किसानों की पूरी कृषि योग्य भूमि 10 हेक्टेयर या उससे ऊपर हो, तो हम लोग जो है तिल की खेती में हम लोग इसका प्रदर्शन एक कराएंगे 14 सप्ताह का, जिसमें किसानों का चयन होगा, हमारे विभाग के विशेषज्ञ उच्चाधिकारी और तमाम प्रगतिशील किसानों को जोड़ते हुए ये कार्यक्रम चलाया जाना है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किसानों के बीच में ये चीज़ जो है उनको जागरूक कर सकें कि देखिए अब समय बदल रहा है और खेती स्वस्थ हो उसके साथ साथ हम भी स्वस्थ रहें ये सबसे ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम स्वस्थ खेती कर पाएंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि हम रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों से धीरे धीरे दूरी बनाएं और धीरे धीरे जैसे दूरी बनाएंगे धीरे धीरे हम कम करेंगे तो हम एक स्वस्थ खेती कर पाएंगे, एक स्वस्थ अन्न उत्पादन कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ऐसे किसान भाई कमर्शियल खेती करते हैं, व्यापारिक खेती करते हैं, व्यवसायिक खेती करते हैं, वो अपना उत्पादन दूसरे राज्य में भेजते हैं, दूसरे देश तक जाता है, तो वहां पे एक जांच होती है कि इसमें कितना रसायन एब्जॉर्ब हुआ है। तो अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे या आईपीएम बी से खेती करेंगे तो उसमें कोई केमिकल नहीं होगा तो हमारा उत्पादन जो होगा दूसरे देशों में जो विकसित देश है यूरोपीय देश है वहां पर भी हम निर्यात कर पाएंगे, जिसमें देश की आर्थिक व्यवस्था भी हम सुदृढ़ कर पाएंगे किसान के माध्यम से। तो हम किसान भाइयों से ये जो है विनम्र अनुरोध करते हैं कि आईपीएम से संबंधित चीजों को अपना करके राजकीय कृषि रक्षा इकाई से हमारे कर्मचारियों से संबंध स्थापित करके मुलाकात करके इसको अपनाएं और अपने खेती को सुदृढ़ रूप से आगे।
1: कृषि रक्षा विभाग की योजनाओं के संदर्भ में डॉक्टर आरडी वर्मा साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत निम्न जानकारी दी है डॉक्टर आरडी वर्मा कृषि रक्षा की योजनाएं विषय पे, एना निमन जानकारी वो दे दी हल जन के धन्यवाद। लेकिन एठो गीत के माध्यम से

0: भैया बहुत बढ़िया। मनमोहन साइन भाई पंच भाई लोअर के लगला थे अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जहाँ सुनल जा जानकारी उर्वरकों का समुचित एवं संतुलित प्रयोग डॉक्टर अजय कुमार प्रभाकर से।
1: के काम कैला में मेहनत के अलावा जौन सबसे ज्यादा जोर देवे वाली बात है उ बीया खाद आ पानी का इंतजाम। अब देख लें बीया और पानी ई तो आदमी समय से ले सकेला, दू दिन चार दिन अगुआ गई चाहे पछुआ गई तबो काम चल सकेला, लेकिन जब खाद का बात आवेले तो सभे यह बात सोचेला कि समय से असमुचित मात्रा में अगर खाद का चयन ना कैल गेल व्यवस्था ना कर गेल तो कुल मेहनत बा ओपर पानी फेर जाए। जवन भी फसल होखे चाहे तिलहनी होखे दलहनी होखे सब्जी वाली होखे या पेड़ पौधा होखे वह में खाद का समुचित और संतुलित उर्वरक प्रयोग कैसे कैल जा यही के बारे में आज जानकारी देवे अपनी कार्यक्रम में आयल हैं डॉक्टर अजय कुमार प्रभाकर जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, खास तौर से फसल प्रबंधन में जौन पोषक तत्वों का भूमिका बा वही पर आप जानकारी देत आयल बानी, एमे काफ़ी बढ़िया आपके जानकारी बा। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में आपके स्वागत बाटे। आखिर एक समय रहे जब आदमी जितना माटी से ले उसे सैगर माटी में डाल दे तो ये समझ लें कि 30-35% हिस्सा पर ही धान का खेती होखे और बाकी खेत बातों पलिहर जोताओ। पलिहर जोतैला के बाद समय से ओमे दलहनी फसल लग जा, जौ गोजई लग जा या ऐसा मोट अनाज वाली फसल लगे जवना के उत्पन्न करे खातिर माटी से बहुत कम पोषक तत्वों का जरूरत रहे। समय बदल गई, कम समय में ज्यादा उत्पादन वाली फसल लिहला का जरूरत पड़ गई। यही तरह से ज्यादा उत्पादन देवे खातिर अधिक से अधिक माटी से पोषक तत्वों के अवशोषित करे वाली जौन फसल है उनका भी विकास हो गई। तो जितना हम उनका माटी से फसल ले तनी ओकर बहुत कम हिस्सा फिर माटी में आ पावत बा।
2: बिल्कुल सही कहते हैं।
1: और एक हिस्सा तो एकदम गायब हो गई खादी का। अब कुल मिला जुला के एक ही हमन के पास अवसर बचा था वो उर्वरक या रासायनिक खाद का।
2: सबसे पहले तो जरूरत है किसान भाइयों को मिट्टी की जांच कराने की। बहुत से किसान कहते हैं कि मिट्टी की जांच की आवश्यकता क्या है। वर्षों से हम खेत में जुताई करते आ रहे हैं, फसलों की बुआई करते आ रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी मिट्टी में कमी क्या है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हम मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच कृषि विभाग भी करता है। उस जिले में यदि कृषि विज्ञान केंद्र है तो कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी सुविधा है मिट्टी की जांच की, और जिलों पे मृदा की प्रयोगशालाएं हैं जहां पर
1: सचल दस्ता माटी जांच कही
2: जी जी जी। उद्यान विभाग है तो कई रेखीय विभाग भी हैं प्रदेश के जो कि मिट्टी की जांच करते हैं। इसलिए आवश्यक है सबसे पहले कि किसान मिट्टी की जांच कराएं, और आजकल बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच कराकर सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाएं।
1: डॉक्टर साहब एक चीज और बा कि माटी का जांच करा लिहला के बाद जौन पोषक तत्वों का मात्रा जमीन में का बा कौन फसल ले तो बहुत लोग कहलन कि देखा भाई समय से जौने खाद मिले वही के डाल दे, कम पैसा रहे तो कम खाद डाले सैगर पैसा रहे तो सैगर खाद डाले। आप लोग का सावधानी बरते के कहली समुचित प्रयोग के बारे में और संतुलित
2: देखल जाए
1: संतुलित उर्वरक का मतलब आपका
2: संतुलित मतलब होला कि जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम और बाकी जो और हमारे गौण तत्व हैं लौह तत्व जस्ता है तांबा है तो ये सब तो खैर गौण तत्व हैं, लेकिन जो हमारा मेन तत्व है जो कि फसलों को पौधों की बहुत आवश्यक है वो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। तो हर फसल की आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम को खेत में डालना चाहिए। अगर हम मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो हमें इससे ये पता रहता है कि हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है फास्फोरस कितना है पोटेशियम कितना है आर्गेनिक कार्बन कितना है, तो उस हिसाब से हम फसल की आवश्यकता अनुसार यदि मान लीजिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है सिर्फ 40 किलो तो हम उतने ही 40 किलो ही नाइट्रोजन डालें, फास्फोरस की आवश्यकता है 20 किलो तो हम 20 किलो उसमें फास्फोरस डालें। मैं एक अनुमान बता रहा हूं। तो ये जब जांच हो जाती है तो हमें इससे पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन से तत्व कितना कम है और हम कितना डालें। अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया आसानी से उपलब्ध होता है, जहां भी जिस किसान से बात करिए तो बुआई के समय भी, बुआई के 35 दिन बाद भी, 40 दिन बाद भी वो यूरिया ही डालता है। तो लेकिन किसान भाई इस बात पे ध्यान नहीं देते कि उस यूरिया में तो सिर्फ नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम है नहीं। तो जब मिट्टी की जांच हो जाती है तो हम उससे पता चल जाता है कि हमें नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन वाला उर्वरक कितना डालना है, फास्फोरस वाला उर्वरक कितना डालना है और पोटेशियम वाला उर्वरक कितना डालना है।
1: सभे कहेला कि यूरिया खाद डाल दिया पर बड़ा तेज खेत हरियर हो जाला, बरखा हो गई तो पानी से बह जाला, पानी के साथे जमीन में नीचे चल जाला। आप लोग का मतलब सुझाव दे ला कि कोनो भी खाद होके, चाहे बुआई के समय होके या जमाव के बाद होकर प्रयोग करे के बाद, तो सावधानी का बरते के चाहिए।
2: सावधानी यह है कि जैसे कुछ तत्वों का जमीन में स्थिरीकरण हो जाता है जो कि पौधों तक पहुंच नहीं पाता है, इसीलिए हमेशा हम लोग कहते

0: कहते हैं कि फास्फोरस और पोटेशियम जो है आप बुआई के समय डाल दीजिए, और जो नाइट्रोजन होता है जैसे ही बारिश होती है या रेतीली भूमि है तो बहुत तेजी से वो नीचे की तरफ चला जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन आधा बुआई के समय, उसका आधे का आधा बुआई के 40 दिन बाद, और फिर फूल या फिर फल जब भी दाना बने उस समय हम नाइट्रोजन डालें, इस बात का हम खास ध्यान रखते हैं। और सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन के साथ होता है, एक हम जिसे कहते हैं कि बह जाना, लोग कहते हैं कि मिट्टी में से बह गया, जिसे हम कहते हैं लीचिंग लॉस, तो उससे बचाने के लिए हम ये कोशिश कर सकते हैं कि नाइट्रोजन का घोल या फास्फोरस, जैसे विदेशों में तो फास्फोरस और पोटेशियम का घोल भी प्रचलित है, लेकिन भारत में नाइट्रोजन का घोल बना के छिड़काव करना, जमीन के अंदर नाइट्रोजन का स्प्रे करना, जैसे हम इसे कहते हैं कि सिंचाई जल के साथ खादों का प्रयोग करना, बीजों को सूक्ष्म तत्वों के घोल में डुबो कर प्रयोग करना, फिर बीजों के ऊपर सांद्र तत्वों का लेप लगाना, फिर तत्वों का घोल बनाकर छिड़काव करना।
1: आप उर्वरक के प्रयोग का कई बात कहली हैं कि माटी में भी घोल के रूप में दिया जा सकेला, सिंचाई के पानी के साथ दिया जा सकेला, अगर बीज के ऊपर एकर कोटिंग का दिया जा, यानी ये कवर चढ़ा दिया जा बहुत गाढ़ा, तो क्या जमता या एकरे विकास पर या कोनो और जोन प्रक्रिया होले विकास वाली ऊपर कोनो प्रभाव नहीं पड़त?
0: देखिए, ये निर्भर करता है कि आप सांद्रता किस हिसाब से लिए,
1: आ कौना फसल का बीज है?
0: किस फसल का बीज है, दूसरा उस मिट्टी में, जिस मिट्टी में हम अपनी फसल बोने जा रहे हैं, हम जब जांच करवा लेते हैं तो जिस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है उस सूक्ष्म तत्वों का ही हम गाढ़े घोल की बनाकर परत के ऊपर उसका लेपन करते हैं,
1: ताकि जमाव के तुरंत बाद पौधा के वो उपलब्ध हो जाए और पौधा के बाकी जीवन में ओकर कमी दिखे ना, पौधा स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल जी।
1: एक चीज और, बाकी नत्रजन के तरह तरह के रूप में प्रयोग कैला के बाद अब तो यो बाकी तमाम ऐसन कंपनी बाड़ी जो उनकी फास्फोरस और पोटाश एहू के भी अब लिक्विड फार्म में यानी घोल के रूप में अब उपलब्ध करावे।
0: जी जी
1: तड़ी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और यूरिया के मान लें कि घरे आदमी पानी से घोल बना सकेला।
0: बिल्कुल।
1: सिंचाई के पानी जैसे जो कीमती फसल बा ओमे भी कई जा
0: बिल्कुल,
1: सकेला।
0: बिल्कुल।
1: बड़ा महत्वपूर्ण बात होले कि धान गेहूं और मक्का है गन्ना है ये में तो लोग खाद का प्रयोग कर लेना, महत्वपूर्ण जोन काफी कीमती है सब्जी वाली फसल,
0: जी जी
1: वो में का विधि अपनावे के चाहिए उर्वरक दिहला का?
0: देखिए, अगर सब्जियों की हम बात करें तो सब्जियों में हम नाइट्रोजन का छिड़काव कर सकते हैं यूरिया का सांद्र घोल बनाकर, और उसमें हम जो घोल छिड़केंगे वो 30 से 40 दिन, होता क्या है कि जो जो नाइट्रोजन का जो अवशोषण होता है वो पत्तियों द्वारा या तने के द्वारा क्यूटिकल या रंध्रों द्वारा होता है और बहुत तेजी से उसका अवशोषण होता है
1: जब घोल के रूप में छिड़काव होता
0: है। हाँ, तो जब सब्जियों का वनस्पतिक ग्रोथ यानी मतलब वृद्धि ज्यादा हो ठीक हो जाए मतलब 30 से 40 दिन बाद, तब हम प्रथम छिड़काव करें सब्जियों में, और अंतराल जो रखे मान लीजिए जैसे आज हम छिड़के तो उसके 8 से 10 दिन बाद हम दूसरा छिड़काव करते हैं,
1: लेकिन मात्रा थोड़ा कम होके की चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मात्रा जो है वो 0.5 से 1.5% यूरिया का घोल रखा जाता है, मतलब आप ये मान के चलिए
1: आधा से 1.5% तक।
0: जी जी।
1: सब्जी वाली फसल,
0: सब्जी वाली फसल,
1: और वह जब पूरा उनका वनस्पतिक वृद्धि हो जाए तब,
0: क्योंकि जब हम इस तरीके से घोल की सांद्रता बनाते हैं तो कई बार फसलों का जलने का डर होता है, जबकि घोल की सांद्रता अधिक होने पर पत्तियों के झुलसने का डर रहता है। घोल का सांद्रण कम होने के कारण एक बार में पौधों को बहुत ही कम मात्रा में तत्व मिल जाते हैं, अतः बार बार छिड़काव करने से श्रम और काफी समय नष्ट होता है। इसलिए किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना प्रतिशत का घोल हमें डालना है और हम उतने ही प्रतिशत का घोल बनाएं।
2: भैया बहुत निम्न जानकारी दी है डॉक्टर अजय कुमार प्रभाकर, उर्वरकों का समुचित एवं संतुलित प्रयोग विषय पे एना निम्न जानकारी खरीद दी है, धन्यवाद। एक साथ भैया अपन आज के चले बेरा भैया चल जा, पंचो जय जवान जय किसान।

आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती बारी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। राम शिरोमन बताते हैं कि इनके पुत्र राज कपूर दिनांक 2/5/2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम टाड़ा, थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7380606450। रामू बताते हैं कि इनकी पुत्री विनीता कुमारी दिनांक 11/11/2024 से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम रामनगर केटवलिया, टोला गोसाईपुरवा, थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9118250570। राम किशुन यादव बताते हैं कि उनकी पुत्री ज्योति यादव दिनांक 29/3/2026 की शाम से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम कोदरी, पोस्ट कोदरी, थाना सहजनवा, जनपद गोरखपुर। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9454403522। मनोज कुमार बताते हैं कि उनकी पुत्री चांदनी दिनांक 29/3/2026 दिन रविवार की सुबह से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम बलियां, पोस्ट जानीपुर, थाना गोला, जनपद गोरखपुर। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। 9728833057। दिनेश बताते हैं कि इनकी पत्नी कुसुम दिनांक 12/3/2026 दिन बृहस्पतिवार की शाम से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम बाथ बुजुर्ग, चीनी मिल, पोस्ट हरपुर, थाना गोला, जिला गोरखपुर। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9621737192। राहुल बताते हैं कि इनकी पत्नी अंकिता श्रीवास्तव दिनांक 9/4/2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर किसी सज्जन को कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। मोहल्ला परदिलपुर, नियर एमजी इंटर कॉलेज, थाना कोतवाली, जिला गोरखपुर। या आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9454403517। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।

0: कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
4: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
4: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें।

0: आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे ब्रिज किशोर त्रिपाठी को, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। भोजपुरी बोली के कार्यक्रम देश हमार में लीजिए सुनिए चंद्रेश्वर प्रसाद शर्मा से कविता पाठ।
1: कष्ट सही के हमके जियावल खियावल, जेकरे चलते हम ये दुनिया में बानी सांस ले रहल बनी, ओ माई के याद करत एक गीत, चटक अजोरिया नहीं बयरिया, चटक अजोरिया।

के गछिया हेरे हारे हरदम अखिया। जिंदगी में संकट दौराई, जिंदगी में संकट दौराई, के छापी के छाई, घोर अन्हरिया आगे पीछे जेकर।

0: जेकर नईखी माई घोर अन्हरिया आगे पीछे। अगला गीत, एगो लइका शहर में बा, गांव से बड़ा गोरा मोह बा, प्यार बा, अपने महतारी से कर रहल बा, बस यह गीत में बा।
1: भावे नाही ऊंच अटारी लौके नाही चांद शहर से चली चली है तुम बिहान, शहर से चली चली है तुम बिहान।

सीधा खाइब चढ़ी न तनिको हेरा, भूजा रस के होला नाही कहियो इहाँ नेवान, शहर से चली चली है तू बिहान, शहर से चली चली है तू बिहान। स्वार्थ के बाजार गरम बा, छल आ कपट बिकाला, आपस के बंधन बा ढील ढील टूट टूट।

छोड़े लोग पुरान शहर से, चली चली हा तुम बिहान शहर से, चली चली हा तुम बिहान। हलो।

0: सतुआ और पिसान शहर से चली चली है तू बिहान शहर से चली चली है तू बिहान छठे क्षमा से छुट्टी पई है इहे घर आ जई है गावे के स्कूल पढ़बी इहवा से नाव कटई है कैसो रात कटल माई कैसो रात कटल माई भोरे करिहा प्यान शहर से चली चली है तू बिहान शहर से चली चली है तू बिहान।
1: पर्यावरण जब ठीक रही तो हम के स्वस्थ रह जाई, वृक्ष लगाई आप पर्यावरण के ठीक करी। आई एक गीत के संदर्भ में, मिलजुल पेड़ लगाव भैया पर्यावरण बचाव भैया, मिलजुल पेड़ लगाव भैया पर्यावरण बचाव भैया।
0: ई काहे के ई मत समझ एक पेड़ के कीमत समझ ई काहे के ई मत समझ एक पेड़ के कीमत समझ जाग और जगाव भैया पर्यावरण बचाव भैया, मिलजुल पेड़ लगाव भैया पर्यावरण बचाव भैया। बिना पेड़ के जिंदगी कैसे रह जाई सब जैसे तैसे बिना पेड़ के जिंदगी कैसे रह जाई जब सैसे तैसे ऐसन सोच भगाव भैया पर्यावरण बचाव भैया, मिलजुल पेड़ लगाव भैया पर्यावरण बचाव भैया। पेड़ बिना पानी ना बरसी दाना दाना मनई तरसी पेड़ बिना पानी ना बरसी दाना दाना मनई तरसी अब्बो आगे आव भैया पर्यावरण बचाव भैया, मिलजुल पेड़ लगाव भैया पर्यावरण बचाव भैया। खेते मेड़े सड़की कगरी ऊसर बंजर भरी द सगरी खेते मेड़े सड़की कगरी ऊसर बंजर भरी द सगरी धरती खूब सजाव भैया पर्यावरण बचाव भैया, मिलजुल पेड़ लगाव भैया पर्यावरण बचाव भैया, मिलजुल पेड़ बचाव भैया पर्यावरण बचाव भैया। और
2: भोजपुरी बोली के कार्यक्रम देश अमर में अभी आप सुन रहे थे चंद्रेश्वर प्रसाद शर्मा से कविता पाठ। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक संगीत में लीजिए सुनिए राजस्थानी लोकगीत।

0: प्रादेशिक संगीत में अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। फिल्मी कव्वालियाँ आप सुनेंगे 7:31 पर। रात्रि 8 आप सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम में वार्ता प्रकृति और मनुष्य, इस विषय पर वार्ता सुनेंगे आप दिलीप कुमार से। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे जगजीत सिंह को। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। स्पॉटलाइट कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे करंट अफेयर्स। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विदुषी श्रुति सादोलिकर से राग नेकी कानड़ा। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। रात्रि 11:05 पर सुनेंगे आप अंग्रेजी में समाचार। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम महाभियान का किया आगाज, कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ, कहा वायु प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन, अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ मां के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
0: कार्यक्रम में विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही श्रावस्ती स्थित गुलेरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण

0: क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जब हम गन्ने से बायोप्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायोप्लास्टिक में से एक है और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं खाद बनेगा, फर्टिलाइजर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि हर तरीके से फायदा ही फायदा, कहीं से कोई नुकसान नहीं।
0: बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहाताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्र भूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सुराहाताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
2: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई।
3: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि तो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतन देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
4: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज एक पेड़ माँ के नाम, तो आज यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 24 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया आगाज। कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
6: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज एवं 100.1 FM पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। फिल्मी कव्वालियों में लीजिए सबसे पहले सुनिए फिल्म बादशाहों से ये कव्वाली।

फिल्म बादशाहों से अभी आप सुन रहे थे कव्वाली। अगली कव्वाली है फिल्म बजरंगी भाईजान से। आवाज़ है अदनान सामी और साथी की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
8: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details, log on to www.ddindia.com।
6: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

आप सुन रहे हैं फिल्मी कवालियों का कार्यक्रम। अगली कवाली है फिल्म माय नेम इज खान से।

फिल्म माय नेम इज़ खान से अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म जन्नत 2 से ये कव्वाली।

0: के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: हिंदी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुषमा श्रीवास्तव से लोकगीतों में राम जानकी विषय पर वार्ता।
4: राम और कृष्ण के भवन है, जहां कोई गीतोत्सव हो वहां इनकी लीलाएं सदा मुखरित होती हैं। राम और सीता हमारे लोक जीवन के आदर्श दंपति हैं। सीता स्वयंवर का आयोजन है। सीता स्वयंवर से पूर्व गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका गईं और राम के सलोने रूप पर मुग्ध हो गईं। राम भी सीता को अपलक निहारने लगे तो लक्ष्मण ने उसे पूछा, वह असामान्य व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उत्तर में राम ने कहा, लक्ष्मण, हमारे कुल में न तो किसी ने रण में पीठ दिखाई है और न पराई स्त्री पर दृष्टि डाली है। यदि आज मैं सीता को आकर्षित होकर देख रहा हूँ तो निश्चय जानो कि यही तुम्हारी भाभी और मेरी पत्नी बनेगी। उधर सीता की भी अजीब मनोदशा थी। चातकी के समान मुड़ मुड़ कर वह राम को देख रही थी। सीता की सखियाँ राम से परिहास करने लगी। चमन की सैरों का था नाम, फूलों का बहाना था, तुम्हें मंजूर मेरी जानकी का दिल चुराना था। इधर हम पूजने आई उधर तुम फूल लेने को, तुम्हें मालूम था सरकार बगीचा जनाना था। सीता स्वयं मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं, मन में बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहिनी सूरत निहारा करूं, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल। सीता का श्रृंगार हुआ सुंदर, बहुत सुंदर, दिव्य अपरूप। सीता अपने कक्ष में के झरोखे में बैठी हैं, स्निग्ध चांदनी तारों चारों ओर बरस रही है। चांदनी झरोखे बैठी नंदिनी जनक की, शीश बनी के झूमर सोहे कटियों की छवि न्यारी, चलत अनोखी चाल लगत प्यारी। चांदनी झरोखे बैठी नंदिनी जनक की, पाँव बनी के पायल सोहे लक्षों की छवि न्यारी, चलत अनोखी चाल लगत प्यारी। एक दिन सुकुमारी जनक नंदिनी ने शिव का धनुष उठाकर सफाई की और पुनः रख दिया। जनक को समझते देर न लगी कि सिया सुकुमारी शक्ति का अवतार हैं, अतः उन्होंने स्वयंवर की शर्त ही शिव धनुष भंग कर रख दी। पुष्प वाटिका में राम सीता परस्पर अनुरक्त हो गए। सीता गौरी को मनाने लगी कि राम ही विजयी हों, बड़े बड़े सुभट स्वयंवर में आए राम के धनुष भंग करने पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए तथा लक्ष्मण से कहा सुनी होने लगे। तब रामचंद्र जी ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें शांत किया। लोकगीत में यह प्रसंग इस प्रकार वर्णित है, कमनिया कहाँ भूल आए प्यारे रघुरैया, आगे आगे चले राम जी पीछे लक्ष्मण भैया, गुरु वशिष्ठ जी उनके पीछे चले जनक फुलवरिया, कमनिया कहाँ भूल आए प्यारे रघुरैया। ब्याह सिय संग हुआ राम का, खुश सिया की मैया, भय आनंद अवध में घर घर बाजे देखो बधैया। सीता स्वयंवर की माला लिए खड़ी मन ही मन गौरी का ध्यान करते हुए उनसे विकल प्रार्थना करने लगती हैं। कैसी खड़ी सुकुमार जानकी हाथ लिए जय माल फुलन की, जिन मन मोहा जनक बाग में अखियां प्यासी उन दर्शन की। श्यामल तनमुख चंद्र मनोहर दासी बनू मैं रघुनंदन की, जब छवि देखी रामचंद्र की भूल गई सब पीर है मन की। जिन चरणों ने तारी अहिल्या दासी बनू उन रघुनंदन की, जब आनंद रामधन तोड़ा डाल दई गलमाल फुलन की। राम ने स्वयंवर की शर्तें पूरी की हैं, राम की जय जयकार हो रही है। सीता ने जयमाल राम को पहना दी है। स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं, सखी आज कैसी मनोहर घड़ी है, गले राम जयमाल सुंदर पड़ी है। इधर पुष्प कलियां महकती निराली, उधर मोतियों की चमकती लड़ी है। खुशी आज अवधपुर की भी बड़ी है। अगर सामने सदे सजे राम खड़े थे तो सीता भी अपने 16 श्रृंगार किए प्रतीक्षा में खड़ी थी। सीता सखियों के साथ राम को जयमाला पहनाने चलती हैं। जिस घड़ी जयमाल पहनाने सिया जाने लगी, हो मुबारक जानकी हम जोलियां गाने लगी। जिस तरह तारा गढ़ों में चंद्रमा होवे उदय, जानकी सखियों में उस दम रूप दिखलाने लगी। राजा दशरथ को खबर भेजी गई कि पुत्र के विवाह के लिए बारात लेकर आए रघुनंदन दशरथ फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि सीता की लगन उनके घर आ गई है और राम की लगन भेजी जा रही है। उल्लास और उत्साह के साथ सभी नाते रिश्तेदारों इष्ट मित्र के साथ दशरथ बारात ले आए। विवाह की रस्में आरंभ हो गईं। घड़ी आज की प्यारी प्यारी मुबारक, दुल्हन को या दूल्हा मुबारक मुबारक। हुआ ग्रंथि बंधन राम सिया का, रस्म ग्रंथि बंधन मुबारक मुबारक। सीता को लेकर राम अवधपुर में प्रवेश करते हैं। घोड़ों और पालकियों के आगमन से आकाश में ऊंची धूल उड़ रही है। बंधनवार बंधी है, सोने के कलश दीप दीपा रहे हैं, चंदन से आंगन लीपा गया है, आम्र पल्लव से युक्त पूर्ण घट मंगल कामना से स्थापित किए गए हैं, गज मुक्ताओं से अलंकरण बनाए गए हैं, मयूरों से उत्कृष्ट सिंहासन पर राम सीता को बैठाया गया है। बहन चौक पुण्य के नेक के लिए 5 लड़ी वाला 9 लखा हार मांग रही है और हार पहनकर उनको चिर सौभाग्य का आशीष देती है। रघुपति आए हैं सिय संग परो अवध में सोर, आए री है रही गगन पे ऊंची धूर। सोने के कल सारी दीप रहे बंध गई बंधनवार, अंगनारी चंदन लिपाइये पूरोरी गज मोतिन चौक। विधि की विडंबना देखिए कि दशरथ राम का राज्याभिषेक कराना चाहते हैं। भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं। कैकेयी मंथरा के उकसाने पर दशरथ से अपने पूर्व में दिए गए 2 वचनों का स्मरण दिलाते हुए राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगती हैं। दशरथ कैकेयी को बहुत समझाते हैं कि हट छोड़ दे, किंतु वह नहीं मानती। फलतः पिता की वचन पूर्ति के लिए राम स्वयं लक्ष्मण और जानकी के साथ वनगमन कर जाते हैं और दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं। पिता की मृत्यु के संदेश को पाकर भरत शत्रुघ्न अयोध्या वापस आते हैं तो बदली परिस्थिति को देखकर पूछते हैं।

पिता हमारे, कहाँ गए सब भैया। वन को गए हैं राम लक्ष्मण, वन को गए हैं सीता, स्वर्ग सितारे पिता तुम्हारे महलों में हैं भैया। भरत व्याकुल हो जाते हैं और सोचने लगते हैं

सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुरैया, सीता बिना है सुनी रसोई कौन करे चतुरैया। राम लक्ष्मण सीता वनों में घूमते घूमते दंडकारण्य के पंचवटी में आते हैं, जहां रावण की बहन सूर्पणखा राम पर मोहित हो जाती है। किंतु अस्वीकृत होने पर अस्वीकृति का कारण सीता को मानकर उसे मारने को दौड़ती है। लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं

वह रावण के पास जाकर सीता के सौंदर्य की प्रशंसा करके उसे उठा लाने के लिए उकसाती है और रावण छद्म वेश में सीता का हरण कर उसे लंका ले जाता है। सीता के वियोग में काम विमोहित राम उन्हें बन बन ढूंढते फिरते हैं, वृक्षों से पक्षियों से उनका पता पूछते हैं। मिस ले

पता है, बेशक सुकुमार वह जहाँ है। पपिहा चकोर कोकिल किसने सिया चुराई, चुप क्यों हो क्या तुम्हारे मुख में नहीं जबा है। मिथिलेश के चमन की सूरजमुखी प्यारी,

0: तब चोर कौन बोलो अब दूसरा यहाँ है। मुख धूप से हैं काले पग में हजारों छाले बन बन फिरे दुखारी जल आँख से रवा है। राम ने सीता की खोज करवाई और रावण को दंडित किया पर अंततः सीता की गर्भावस्था में उसको परित्याग दिया। इस प्रकार भारत के लोक गीतों में राम और जानकी को आधार बनाकर भावों की सुंदर निष्पत्ति हुई है। करुण रस और दुखांत होने के कारण राम कथा मर्म स्पर्शी है और भावों को उत्प्रेरित करने से लोकप्रिय है।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुषमा श्रीवास्तव से लोकगीतों में राम जानकी विषय पर वार्ता। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह को।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
6: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
6: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को। आकाशवाणी का एक गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों,

0: सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट

पॉट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को

0: कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर

0: श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ

0: किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hongi, sath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
2: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
1: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a

फिल्म दिलवाले से अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू को। अगला गीत है फिल्म जुर्म से, आवाज़ है कुमार सानू व साधना सरगम की।

फिल्म साजन से अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू व अलका याग्निक को। अगला गीत है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से, आवाज़ एक बार फिर कुमार सानू व अलका याग्निक की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विदुषी श्रुति सादोलिकर से राग नेकी कान्हड़ा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी श्रुति सादोलिकर से राग नेकी कानड़ा। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।